सूरज कुमार और साथियों की गाए इस भक्ति गीत के बाद कार्यक्रम में अब सुनते हैं मीरा भजन निर्मला देवी की आवाज में।

0: वसल्लम। मोहम्मद रफ़ी और साथियों के गाए इस नात के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आज की हमारी चर्चा का विषय है दालों को घुन से कैसे बचाएं। चाहे वो दालें हों या फिर कोई भी अन्य अनाज, भंडारण के समय हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है भंडारण में लगने वाले कीड़े। खेत में हम कीड़े एवं बीमारियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, साथ ही जो अन्य तरीके हैं उनको भी अपनाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत से प्राप्त जो अनाज या दाल वगैरह होता है, इसका भंडारण हमने ठीक ढंग से नहीं किया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि भंडारण में लगने वाले जो कीड़े होते हैं या जो बीमारियाँ होती है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ तक दालों का सवाल है, दालें प्रोटीन की मुख्य स्रोत हैं। इनका प्रयोग लगभग हर मनुष्य करता है और हमारे देश में जहाँ पर शाकाहारी लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है, केवल दालें ही एकमात्र साधन है जो कि प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं। दालों के भंडारण में भी कई कीड़ों का प्रकोप होता है, जिसमें से प्रमुख हैं पल्स बीटल या दाल भृंग, या जिसे हम आम भाषा में घुन कहते हैं। इस कीड़े से दालों को काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान जो कीड़े के बच्चे होते हैं वो करते हैं, जो कि दानों के अंदर रहते हैं और अंदर ही अंदर दानों को खाकर ख़त्म कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कीड़े की उपस्थिति का पता हमें तभी लगता है जब इसके प्रौढ़ दानों से बाहर निकलते हैं। किसान भाइयों, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कीट से लगभग 10-12% प्रोटीन की हानि होती है। इसके प्रकोप से बीजों की अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती है। इस कीड़े से दालों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक व धूमकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जहरीले होते हैं और अपना अवशेष छोड़ते हैं। साथ ही महंगे होने के कारण कभी कभी छोटे किसानों के पहुंच से बाहर भी होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसी सुरक्षात्मक चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे ना तो दालों की पौष्टिकता पर कोई बुरा प्रभाव पड़ता है और ना ही घुन का प्रकोप नुकसान पहुँचाता है। इन्हीं में से एक है खाद्य तेलों का प्रयोग। अगर आप दालों में नारियल का तेल 500 ग्राम प्रति क्विंटल की दर से खूब अच्छी प्रकार से मिलाकर रखें तो 5 से 6 महीने तक इनमें कीट का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नारियल के अलावा मूंगफली या सरसों के तेल का प्रयोग भी किया जा सकता है, परंतु इन सब में नारियल का तेल ज़्यादा प्रभावकारी पाया गया है। तेलों से उपचारित करते समय यह ध्यान रहे कि दालें खूब अच्छी तरह से सुखा ली गई हो तथा उनमें नमी 10% से ज़्यादा ना हो। जब आप तेल दालों में मिलाते हैं तो ये ध्यान रहे कि तेल की एक हल्की परत दालों के चारों तरफ लग जाए। इसके अतिरिक्त शरीफा, जिसे हम कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, उनके सूखे बीजों को अगर पाउडर बनाकर उनसे भी दालों का उपचार कर लें तो भी दाल 4 से 5 महीने तक खराब नहीं होते। इनसे उपचारण के लिए सूखे बीजों को अच्छी तरह से पाउडर बनाकर 2 किलोग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका प्रयोग मुख्य रूप से दाल बीज भंडारण के लिए कर सकते हैं। अनुसंधान से पता चला है कि अगर पुदीने की सूखी पत्तियों का अच्छा पाउडर बनाकर तथा अजवाइन का पाउडर बनाकर दालों में 10% के हिसाब से मिलाकर रखें, तब भी इन्हें हम घुन से बचा सकते हैं। खासकर मूंग, उड़द आदि को तो 4 से 5 महीने तक सुरक्षित भंडारण हम इस तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से दालों का उपचार कर हम दालों को घुन से बचा सकते हैं और घुन से होने वाले नुकसान को कुछ हद तक रोक सकते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एग्री टिप्स।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपये मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद

0: registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. Gukesh and Pragnananda secured wins for India, while Arjun Erigyasi was held to a draw by veteran Michael Adams. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Anantjeet Singh Naruka, Bhavtek Singh Gill and Mehraj Ahmed Khan on winning the bronze medal in the men's ski team event. Sharing a social media post, Mr. Modi noted that their focus and teamwork have been exemplary. He also extended best wishes to them for their future endeavours. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 6:10 हुए हैं। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा लिटिल अंडमान की यात्रा पर आज सुबह 8 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी होगी आज रात 8 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी कालीघाट कैम्बल बे के लिए आज सवेरे 7 श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा इसकी वापसी होगी रविवार 27 तारीख को सुबह 8 कैम्बल बे से। जाते व आते समय ये जलयान लिटिल अंडमान कारनिकोबार चौरा तेरेसा कचाल और नानकौरी में भी रुकेगा। एमवी जॉली बॉय मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल प्रातः 7 श्री विजयपुरम से जाएगा। ये जलयान शनिवार 26 तारीख को सवेरे 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी सेंटिनल शनिवार 26 तारीख को सुबह 7 लिटिल अंडमान होते हुए कारनिकोबार के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान रविवार 27 तारीख को शाम 4 कारनिकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बंबुका शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप के लिए आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम के लिए यात्रा करेगा। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज शाम 5 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी बंबुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से छूटकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप के लिए कल प्रातः 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप के लिए कल दिन में 11 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से छूटकर श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से चलेगा तथा इसकी वापसी होगी कल शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप के लिए कल शाम 5 श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान परसों शनिवार 26 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा।

0: अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

नमस्कार श्रोताओं, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज इस कार्यक्रम का शीर्षक है खुशबू। दोस्तों, खुशबू प्रकृति की एक सुंदर देन है। ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम इसकी महक को आसानी से महसूस कर सकते हैं, चाहे फिर वो फूलों की हो या फिर बारिश के बाद गीली मिट्टी की। ये खुशबुएं हमारे जीवन को हमेशा महकाती रहती है।

दोस्तों, खुशबू का अर्थ केवल महक से नहीं बल्कि किसी की आंखों में छुपे हमारे लिए उस एहसास से भी होता है जिसे हम सिर्फ रूह से महसूस कर सकते हैं।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही थी तेरेसा। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 371वीं कड़ी।

श्री राम अयोध्या वासियों को मानव तन प्राप्त करने के सौभाग्य और फलाफल का उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नौका के समान है। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर पार न कर पाए वो महाकृतघ्न और मूर्ख होता है। हे नगरवासियों, इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के सुलभ मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, उसे सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का मार्ग अपेक्षाकृत सहज होता है, किंतु संत समागम के बिना इसकी साधना नहीं हो पाती। बड़े पुण्य अर्जित करके संतों की संगति मिलती है और पुण्य अर्जित करने का साधन है कपट त्याग कर मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना जो पूज्य हैं, जिनके चरण वंदनीय हैं। प्रजाजन के सम्मुख श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, देवाधिदेव महादेव का भजन किए बिना मनुष्य मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में न तो यज्ञ और जाप की आवश्यकता है और न ही तप और उपवास की।

अभी आप रामचरितमानस गान की 371वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और उत्तरा केलकर, एवं संगीत संयोजन किया सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:40 हुए हैं। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत अभी आप कुछ देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:50 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम के कारण समुद्र में वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रहेगी, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।

अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह तक के मौसम संबंधित पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये थी मौसम की जानकारी और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सवेरे 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। 7:15 पर प्राइमरी चैनल पर आप सुनेंगे कार्यक्रम देश रागिनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर गुड मॉर्निंग अंडमान में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे डॉक्टर पूनम त्रिपाठी से ली गई भेंटवार्ता। विषय रहेगा पृथ्वी के महासागर, साथ ही कुछ फिल्मी गीत भी आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे शिखा मजुमदार, रामकृष्ण चंदेश्री, रत्ना गांगुली और शीलाधर। फिल्म गीतों का लुत्फ लीजिए सुबह 9:00। 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म गीत सुनिए 9:45 पर। तत्पश्चात सुबह 10:00 आप सुन पाएंगे कार्यक्रम SMS माई चॉइस। दिन के 11:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1379वीं कड़ी। बिखरेगा पुराने फिल्म गीतों का जादू भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में 11:30 पर। सुपरहिट गीतों का आनंद लीजिए तेलुगु कार्यक्रम में 12:00। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30। 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रद्युम्न शर्मा और ताहिरा सईद को आप सुन पाएंगे। आपके नाम फिल्मी पैगाम कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा संपन्न होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम के साथ। तत्पश्चात 3:30 पर सुनिए कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप सुनेंगे तपोइमिंग गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत पुराने गीत। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 4:30 पर। 4:40 पर बताया जाएगा कार्यक्रमों का विवरण। 4:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में कृषि कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:00। 5:30 पर बांग्ला में होगा कार्यक्रम चिरोंतनी। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में सीपी घाट में घरेलू बागवानी करने वाली महिला श्रीमती शीला देवी से मुलाकात की जाएगी। विषय रहेगा आंगन में हरियाली, जीवन में खुशहाली। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर विशेष कार्यक्रम सागरमाला। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम और रात 10:00 आप सुनेंगे जापान में खेले जा रहे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को है। अब कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: येन भारतेन कांस्य पदकं प्राप्तं सहैव भारतस्य पदक संख्या द्वादश जाता यस्मिन् एकं सुवर्णं पञ्च रजत पदकानि तथा षट् कांस्य पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 4.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 92% तथा न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल शाम द्वीपों का अधिकतम तापमान रहा 27.7 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय सवेरे 5:08 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:14। मौसम के बाद अब विमान की उड़ान संबंधी सूचना। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा विमान संख्या 2936 की श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान होगी दिन के 11:40 पर। ये थी एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार विमान की उड़ान संबंधी सूचना। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन इस अंतराल के बाद।

0: अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जराश्रम वादः दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु सुत्वत् दाढ्यकृत् शिरश्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयेत्। शरीर में तेल लगाने की प्रक्रिया को आयुर्वेद में अभ्यंग कहा गया है। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन करने का परामर्श शास्त्रों में उपलब्ध है। यह शरीर एवं मांसपेशियों में होने वाले दर्द और थकावट को कम करता है, अच्छी नींद प्रदान करता है और आयु को बढ़ाने में भी सहायक है। विशेष रूप से सिर, कान और पैरों में नियमित रूप से अभ्यंग करना चाहिए। आयुर्वेद अपनाइए, जीवन स्वस्थ बनाइए। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को द्वीपों में मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष प्रकोष्ठ तथा अंडमान निकोबार स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-9017-01 पर।
2: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
3: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
4: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत
5: 102 या 112
4: नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
6: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये क्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते।
7: नेशनल हेल्थ मिशन अंडमान तथा निकोबार के द्वारा जारी।
8: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल नई दिल्ली में विभिन्न नेताओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। मत्स्य विज्ञान प्रभाग की ओर से फिनफिश एवं शेलफिश रोग निदान एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा बैच कल से शुरू और द्वीपों के एक आध स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना जताई गई है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल नई दिल्ली में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार मुलाकात की। इससे पहले उपराज्यपाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी, डॉ. B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के साहित्य पीठ के संस्कृत अधिष्ठाता प्रोफेसर सत्यकेतु और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी समीर शर्मा से भी मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की आयुष शाखा ने अंडमान निकोबार राज्य आयुष सोसाइटी के सहयोग से कल आयुर्वेद दिवस मनाया। इस अवसर पर राष्ट्रीय पोषण माह के हिस्से के रूप में आयुष अस्पताल जंगलीघाट में आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद समग्र स्वास्थ्य पोषण और स्वस्थ जीवन शैली की प्रथाओं को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य निदेशालय के डॉ. M. सिद्धाराजू और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ आयुर्वेद पोषण और कल्याण पर आयोजित मिनी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान व्यंजन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। आयुष के उपनिदेशक डॉ. कल्याण पी. कदभानी ने आयुर्वेद दिवस और पोषण माह के तहत पूरे द्वीपों की सभी आयुष इकाइयों द्वारा आयोजित की जा रही महीने भर की गतिविधियों तथा कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। द्वीप समूह के विभिन्न विभागों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में प्रशासन के सचिवालय तथा विभिन्न विभागों और कार्यालयों के राजपत्रित अधिकारियों के लिए आज सुबह 10 बजे राजभाषा विभाग के हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण केंद्र में हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। भूमिगत केबल की मरम्मत, लाइन क्लियरेंस तथा आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों के संबंध में 26 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत भवन, शादीपुर, मजार पहाड़, गुरुद्वारा लाइन, मिडिल पॉइंट, जंगली घाट, डेयरी फार्म, स्कूल लाइन, मिनी बे और नया गाँव सहित कुछ क्षेत्र शामिल हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत ग्रामीण विकास PRI और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से कैम्बल बे, कार्निकोबार, फरारगंज, मायाबंदर, प्रातरापुर और रंगत ब्लॉक में स्वच्छता अभियानों, जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन गतिविधियों में छात्रों, सफाई मित्रों, अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। स्वच्छता से समृद्धि के संदेश के साथ युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। ये अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है प्रशिक्षण और मौसम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM

100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विज्ञान प्रभाग, मत्स्य विभाग और आत्मा के सहयोग से फिनफिश एवं शेलफिश रोग निदान एवं प्रबंधन विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पहला बैच 22 सितंबर को शुरू हुआ, जबकि दूसरा बैच कल से शुरू होगा। ये आयोजन राष्ट्रीय जलीय जंतु रोग निगरानी कार्यक्रम चरण 2 के तहत किया जा रहा है। द्वीपों के एकाध स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। कल से 29 सितंबर तक मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर तेज हवाओं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचने की संभावना है। विश्व पर्यटन दिवस के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के BBA टूरिज्म इको टूरिज्म क्लब के छात्रों के लिए 2 दिवसीय बर्ड टूरिज्म कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को द्वीप समूह की समृद्ध पक्षी विविधता से परिचित कराना और जिम्मेदार तथा प्रकृति आधारित पर्यटन गतिविधि के रूप में बर्ड टूरिज्म की क्षमता के बारे में जानकारी देना था। सत्र का नेतृत्व अंडमान बर्ड टूर के संस्थापक और स्थानीय पक्षी विशेषज्ञ अरुण सिंह ने किया, जिन्होंने छात्रों को द्वीपों के स्थानिक और अन्य महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों के बारे में बताया। मध्योत्तर अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने उत्तर और मध्य अंडमान में समुदाय उन्मुख इको टूरिज्म और प्रकृति आधारित पर्यटन की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मुख्य भूमि के संस्थानों में द्वीप समूह के छात्रों के लिए आरक्षित विभिन्न व्यवसायिक तकनीकी और गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों के आवंटन के लिए परामर्श का आयोजन किया जाएगा। परामर्श सत्र टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित होगा। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर परामर्श के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। पहाड़गांव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पत्थरगड्ढा स्थित कलवर्ट के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान और उसके परिजनों के विवरण को अभी पता नहीं लगाया जा सका है। मृतक की लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच, रंग गोरा और उसने खाकी रंग की फुल पैंट पहनी हुई है। पुलिस ने आम जनता से मृतक की पहचान करने में मदद के लिए जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। कृषि विभाग के विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत कृषि अधिकारी का 1, कृषि इंजीनियरिंग सहायक के 2 और कृषि सहायक के 7 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म 23 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से पोंगीचांग और डॉलीगंज स्थित शक्ति निवास और वर्किंग वुमेन हॉस्टल में विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें सखी निवास प्रबंधक के 2, वार्डन के 2 और केयरटेकर के 6 पद शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल नई दिल्ली में विभिन्न नेताओं के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। मत्स्य विज्ञान प्रभाग की ओर से फिनफिश एवं शेलफिश रोग निदान एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा बैच कल से शुरू और द्वीपों के एकाध स्थानों पर आज भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं।

देश रागिनी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा प्यारा देश भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है। इसकी मिट्टी में अपनापन है, हवाओं में खुशबू है, नदियों में जीवन है और तिरंगे में हमारे सपनों की उड़ान है। आइए हम सब मिलकर अपने इंडिया को उन्नत और सबसे खूबसूरत देश बनाएं।

वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत बलिदानों की गूंज है जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत में सांस लेने का अधिकार दिया। ये उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। आइए मिलकर कहें वंदे मातरम।

विविधताओं का संगम है हमारा ये देश भारत। इसकी संस्कृति में प्रेम है, प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा मेल है। हमारे देश में जहाँ एक छोर पर हिमालय की अडिग चोटियाँ हैं, दूसरे छोर पर लहराता सागर, कहीं रेतीली चोटियाँ तो कहीं खूबसूरत घाटियाँ, मानचित्र पर खूबसूरती बिखेरता हमारा ये देश भारत है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं अब

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज है बृहस्पतिवार, शक संवत 1948 के आश्विन माह की दूसरी तिथि यानी 24 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, आज है विश्व समुद्री दिवस। कहते हैं जहां धरती की सीमाएं समाप्त होती है वहीं से समुद्र की अनंत कहानी शुरू होती है। समुद्र केवल पानी का अथाह विस्तार नहीं बल्कि हमारे जीवन, व्यापार, संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने वाला एक विशाल सेतु है। आज हम विश्व समुद्री दिवस के अवसर पर उन सभी समुद्री योद्धाओं, नाविकों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक नमन करते हैं जिनके अथक परिश्रम से दुनिया के देशों के बीच व्यापार और संपर्क निरंतर बना रहता है। विश्व समुद्री दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि सुरक्षित समुद्र, स्वच्छ समुद्र और सुरक्षित नाविक हमारे उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण नींव है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है पर्यावरण कार्यक्रम।
1: पर्यावरण कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम अब भी इस बड़े हिस्से के बारे में बहुत कम जानते हैं। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे महासागरों के बारे में। इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में भूगोल विभाग की अतिथि प्रवक्ता डॉक्टर पूनम त्रिपाठी। डॉक्टर पूनम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले जानना चाहेंगे महासागर किसे कहते हैं?
2: सागर भी हैं, महासागर भी हैं। तो महासागर जो है वो जो बहुत लार्ज वाटर बेसिन्स हैं हमारी पृथ्वी पर, एक दूसरे से कनेक्टेड जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें महासागर कहते हैं। और जैसा आपने कहा कि ये पूरी सतह का 70.8% कवर करते हैं और इनमें हमारी पृथ्वी का 97% जल है। तो ये जो महासागर है, जल का मेन वाटर सोर्स यही है। हमने सबने सुना है सात महासागर हैं, सात समंदर कहेंगे, लेकिन सात नहीं है, पांच हैं। सबसे बड़ा है उसमें पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर जिसे कहते हैं, फिर है अटलांटिक, तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर, उसके बाद आता है अंटार्कटिक ओशन या सदर्न ओशन भी कहते हैं उसे, और उसके बाद है आर्कटिक ओशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ पोल के पास है। तो ये पांच है। और पैसिफिक कभी कभी उनकी जो क्वालिटीज है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए पैसिफिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक में भी डिवाइड करते हैं, और अटलांटिक को भी नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन कहते हैं। तो इस वजह से कभी आप देखेंगे कहेंगे होगा सात महासागर, कभी पांच, वैसे हैं पांच।
1: सागर, खाड़ी, जलसंधि या एस्चुरी, ये क्या है?
2: पहले समझना, पृथ्वी पर जो मेन वाटर बॉडीज हैं वो महासागर हैं, और फिर महासागर और जमीन का जो हिस्सा है वो जहाँ ज्वाइन करता है वहाँ पर ये सारे ज्योग्राफिकल ये सब लैंडफॉर्म्स पड़ते हैं। तो सागर जो है वो भी खारा पानी ही है, लेकिन वो महासागर से छोटा होता है। उसका जो विथ है, जो एरिया है बेसिन का, वो महासागर से छोटा है, और जो सागर है वो लैंड से टच रहता है। जो महासागर है वो पानी आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, कुछ कुछ जगह लैंड से टच है, लेकिन जो सागर है वो ज्यादातर लैंड एरिया से टच में रहते हैं, उनके मार्जिन्स पर रहते हैं। तो वो एक मार्जिन की तरह काम करते हैं, लैंड के भी मार्जिन में आ जाते हैं और ओशन के भी मार्जिन में आते हैं। दूसरा, सागर की जो डेप्थ होती है, बेसिन की डेप्थ, वो कम होती है एज कम्पेयर टू महासागर। और इसकी डेप्थ कम है, और ये क्योंकि लैंड से जुड़ा होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत आते हैं, नदियां जो लेके आती है, नदियां अपना जो जल डालती है सागर में ही देती है, तो इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है। सन की

0: पानी में थोड़ा ज्यादा जाती है, तो इसलिए इनमें जो है हमारी बायोडायवर्सिटी जो है सागर की वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशंस। और तीसरा है जो हम लोग इसका नमकीन जो होता है सलिनिटी जो कहते हैं, तो क्योंकि सागर लैंड से घिरा हुआ होता है जनरली इसमें सलिनिटी ज्यादा होती है, एवरेज से सागरों में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओशंस। और खाड़ी उसे कहते हैं जब वो वाटर बॉडी जो है वो तीन तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ होता है। जो सागर है वो दो साइड से भी घिरा हो सकता है, एक साइड से भी लैंड को टच कर सकता है, लेकिन जब वो वाटर बॉडी तीन तरफ से घिरी होती है लैंड से उसे खाड़ी कहते हैं। और जब वाटर बॉडी और एनक्लोज्ड होती है उस लैंड एरिया में तो उसको हम लोग बे भी कहते हैं। एक्चुअली गल्फ और बे हिंदी में एक ही शब्द है खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए दो शब्द होते हैं, एक है गल्फ और एक है बे। तो गल्फ होता है जो चौड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है, तीन तरफ से लैंड होगा, और बे जो है वो छोटा होगा, वाटर बॉडी छोटा है, तीन तरफ से लैंड होते हैं उसके। तो जैसे हमारे गल्फ ऑफ मेक्सिको है, गल्फ ऑफ कैम्बे है, गल्फ ऑफ कच्छ है, और बे में हमें पता है हमारा बे ऑफ बंगाल है, सैन फ्रांसिस्को बे है। सो ये सब बेस जो है वो थोड़े छोटे होते हैं। और जल संधि दो वाटर बॉडीज जो है, दो सी हो ओशन हो, वो दो के बीच में जो कनेक्टर पानी होता है, बीच में लैंड होगा थोड़ा सा कनेक्टर जो होगा उसे हम लोग स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। तो ऐसे हमारे पाक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो आपका मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है। हमारा पाक स्ट्रेट जो है एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है जो अरेबियन सी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, इसको कनेक्ट करता है। और कछार जिसे एस्चुरी, तो एस्चुरीज जो है ये ऐसा है जहाँ पर खारा पानी और नदी का जो मीठा पानी है वो जी मिलते हैं, वहाँ पर ये एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ना पानी पूरी तरह खारा है ना मीठा है, तो वहाँ पे टाइड का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बायोडायवर्सिटी बहुत हाई है, क्योंकि यहाँ पे मीठे पानी वाले भी बायोडायवर्सिटी मिलती है, खारे पानी वाले भी मिलती है, और इन दोनों में जो सर्वाइव कर सके वो भी मिलते हैं। जैसे हमारे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, मेंढक हैं, बहुत किस्म के होते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो ये समुद्र का एक्सटेंशन है ऑन टू द लैंड एरिया।
1: अब ये सब हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है?
0: पहली बात, जब ये हमारे पृथ्वी का 71% एरिया कवर कर रहे हैं, इनकी वजह से ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो पृथ्वी चल रही है, जो इस पृथ्वी पे हम रह पा रहे हैं, जो हमारी लाइफ है इस अर्थ की, वो इन महासागरों की वजह से ही है। अभी हमें पता है हमारी पृथ्वी जो है उसका एक बैलेंस है टेम्परेचर का, कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाती है, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं कर पा रही है, ये इन समुद्र की वजह से। ये पानी जो है ये हीट अब्सॉर्ब करते हैं, तो जब दिन का वक्त होता है तो इसमें हीट ये अब्सॉर्ब करते हैं और ये उसको रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पृथ्वी है वो रहने लायक है, इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फिर ये सारे जितने हमारी जो साइकिलिंग चल रही है, जो पीने का पानी, हम जैसे बताया मैंने 97% पानी तो खारा पानी है महासागरों में, बाकी ये जो 3% है इसका जो ये चल रहा है वाटर साइकिल के थ्रू ही हो रहा है। तो पानी समुद्र से इवेपोरेट होता है, लैंड एरिया पे आता है, बारिश होती है, नदियों में आ जाता है, वही फिर हम यूज करते हैं। तो सागर नहीं होंगे तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह से कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सब का ये सपोर्ट सिस्टम है। और अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये भी इन महासागरों से ही हो रहा है। जैसे हमें पता है कि इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरिया में हीट ज्यादा है और पोलर एरियाज में कम है, तो सागरों में ओशन करेंट्स हैं, वो जैसे लैंड पे नदियां हैं वैसे इन महासागरों के भीतर नदियां हैं, इनको करेंट्स कहते हैं, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो क्योंकि ये पूरा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने ग्लोबल टेम्परेचर को, इस कारण से यहाँ लाइफ पॉसिबल है। दूसरा, ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसे हम सांस लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आधा जो है 50% जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई समुद्र से जाती है, क्योंकि समुद्र में महासागरों में जो ये प्लैंकटन है ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये ऑब्वियसली फूड चेन का मेन हिस्सा है, फिशेज पे डिपेंडेंट है हम लोग, उसके अलावा हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं इनसे, खाना तो मिलता ही है, फूड चेन है, फिर मिनरल्स मिलते हैं, तेल मिल रहा है, बालू और ग्रेवल इनसे हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल रही है, हमें ये एनर्जी देते हैं, टाइड से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है समुद्र। आज भी 80% जो ट्रेड है वो इन्हीं महासागरों के ऊपर से ही जाता है, जहाजों से ही जाता है, पैसेंजर्स फ्लाइट्स ले रहे हैं लेकिन सामान जो ट्रेडिंग है वो सारा सी से ही हो रहा है। एक लाइफलाइन है, ये कनेक्ट करती हैं, और इसीलिए इनको एक टर्म दिया गया, सारे महासागरों को एक साथ इनका टर्म

0: कहते हैं हम लोग वर्ल्ड ग्लोबल ओशन, क्योंकि पानी में कहीं बाउंड्री नहीं है, वो तो हम लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से एक मैप के ऊपर लाइनें
1: सीमा
0: खींच दी है कि ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, लेकिन वहां पे रहने से हमें डिफरेंस नहीं समझ आएगा, वो
1: तो
0: कहते
1: जिस तरह
0: हैं।
1: से अभी आपने बताया, ये मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है और तापमान को नियंत्रित करने में महासागरों की बहुत बड़ी भूमिका है।
0: बिल्कुल
1: ये संसाधन अब
0: जी,
1: खतरे में क्यों है?
0: सबसे बड़ा प्रदूषण है इसका कारण, और इतना ज्यादा हो गया है प्रदूषण समुद्र का कि अब उसे सफाई करने में उसके कम से कम 100-150 साल और लग जाएंगे। क्योंकि इनिशियली हमें लगा कि समुद्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, जो भी है अगर हम इसमें फेंक देंगे तो वो समुद्र ले लेगा, हम कहते भी हैं समुद्र ले लेगा, अपने अंदर समा लेगा, लेकिन उसका असर हमने सोचा नहीं था। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में भी जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है इन जीवों के लिए जो समुद्र में है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। फूड वेब में प्लास्टिक आ जा रहा है, समुद्री जीव भी खतरे में है और हमारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा एक खतरा है ओवर फिशिंग का, जब से

0: संभालेगा, लेकिन उसका असर हमने सोचा नहीं था। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में भी जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है वो बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है इन जीवों के लिए जो समुद्र में है, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। फूड वेब में प्लास्टिक आ जा रहा है, समुद्री जीव भी खतरे में है और हमारी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। दूसरा एक खतरा है ओवर फिशिंग का। जब से ट्रॉलर्स आए मछली पकड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो जो मछलियाँ जरूरी है वो तो पकड़ते ही, उसके साथ बहुत अन्य को भी पकड़ लेते हैं और बहुत ज्यादा कर लेते। तो जो एक बैलेंस होना है, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये अपने आप को बढ़ा लेगा, लेकिन अगर हम सभी को छटा देंगे एक बार, तो बढ़ने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा स्टॉक। फिशिंग की वजह से समुद्र में और भी प्रॉब्लम है, जैसे ये जो फिशिंग नेट्स जब फट फुट जाते हैं, ये लोग समुद्र में ही फेंक देते हैं, फिर उसमें सब जीव फंस जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो समुद्र के लिए अभी सबसे खतरा जिसका है, वो है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसका तो कोई तुलना ही नहीं है, वो हर लेवल पे समुद्र को, महासागरों को वो चेंज कर दे रहा है।
1: किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
0: ये जैसे पहले है कि समुद्र गर्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ज्यादा जा रही है एटमॉस्फेयर में, हीट अब्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, तो पानी ही अब्सॉर्ब कर रहा है उसे। अब ये गर्म हो जाता है, तो जब पानी गर्म हो जाता है, इसमें जो गैसेस हैं वो घुलने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, चीनी घोलते हैं पानी में, गर्म कर देंगे तो तुरंत गल जाएगी। तो समुद्र भी जैसे गर्म हो रहा है, उसकी वजह से जो गैसेज है वो ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से समुद्र और एसिड होता जा रहा है। अब जब समुद्र एसिडिक हो रहा है, तो फिर जो जीव जंतु है उनके लिए मुश्किल हो रही है सर्वाइव करना। एक और हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो पानी भी इसमें आ रहा है। तो पहले पानी की क्वांटिटी भी बढ़ रही है, वो पानी और गर्म भी हो रहा है, और वो और एसिड होता जा रहा है। तो तीनों चीज एक साथ कंबाइन करके क्लाइमेट चेंज ने इस इकोसिस्टम को, हमारे जो पृथ्वी का जो बायोस्फीयर हम लोग कहते हैं, जो इकोसिस्टम है, उसका संतुलन बिगाड़ ही दिया है। अभी वो जो बिगड़ने का जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई है। पहले था कंट्रोल कर लेंगे कार्बन एमिशन तो we could recover, but now it has crossed that point and with time हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या होगा।
1: अब इसे कैसे हम बचा सकते हैं, या आम नागरिक महासागर संरक्षण में कैसे सहयोग कर सकता है?
0: सबसे पहले जो चीजें क्लाइमेट चेंज में जो रहती हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने लेवल पे, कार्बन एमिशंस कम करें, और वो तभी कम होगा अगर हम लोग अपने ये कंज्यूमरिस्टिक माइंड से निकलेंगे, जो जरूरत है उसी पे फोकस करेंगे, उसके वजह से होगा। दूसरा, प्लास्टिक अपनी तरफ से जितना कम हो उतना प्लास्टिक का यूज कम करें, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए, लैंड में डालने से भी, वहां भी हर तरफ से खतरा ही क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक। और कचरा हर दिन जनरेट होता है, हर घर में जनरेट होता है, उस कचरे को सही तरीके से डिस्पोज करें। हमें लगता है कि मेरे एक इंसान के एक बॉटल को समुद्र में डालने से क्या हो रहा है, लेकिन अगर सब ऐसे करने लगे तो इस अर्थ पे 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो कितना हो जाएगा। तो इसे हमें समझना है, हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, और कुछ है लोकल क्लीनअप ड्राइव्स जो होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं सबको। आपको पता है जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए ही हानिकारक है। मे बी हमें तुरंत उसका लिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले साल में दिखेगा ही। इसको अपने लेवल पे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर पूनम, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने महासागरों के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप डॉक्टर पूनम त्रिपाठी से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था पृथ्वी के महासागर। भेंटकर्ता थी जयशीला। श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
3: नमस्ते, गोयनकास्ट की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयन काज में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स। तो देर किस बात की, इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयन काज से। गोयन काज की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।

0: पर्व हो। अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं बारूद फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल पर शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

राहत फ़तेह अली खान, तुलसी कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था वंस अपॉन ए टाइम मुंबई फिल्म का से। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत से सजाया था प्रीतम ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: दोस्तों, घंटे भर तक क्या आप संगीत की खुमारी में खो जाना चाहते हैं? लगातार संगीत की बहार, गाने बेशुमार, 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम चैनल पर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को समय होता है दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक। प्रोग्राम का नाम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 8 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत

0: गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
5: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1,170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना

0: महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एक मुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत एमवी केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त

0: किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नव भारत टाइम्स ने लिखा है S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra from Varnagar to Varanasi.

रामकिशन चंद्रेश्री की आवाज़ में ये गीत था पुरुषोत्तम चक्रवर्ती का लिखा हुआ। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं राजेंद्र अनुरागी की रचना।

0: सुगम संगीत का ये कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

आवश्यक सूचना: आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है।

मोमिन की लिखी ये गजल थी शीला धर की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में सुनिए गालिब का कलाम।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप शिखा मजूमदार, रामकृष्ण चंदेश्री, रत्ना गांगुली और शीलाधर की आवाज़ों में चंद गीतों एवं गज़लों का लुत्फ ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, बोल इरशाद कामिल के, धुन बनाई विशाल शेखर ने।

शान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में ये गीत था पीके फिल्म से। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे तथा संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के सातवें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता फरतनाज।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। सेवा संकल्प अभियान के इस विशेष अंक में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। आज का विषय है स्वच्छता से सम्मान तक। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है और इस एक वाक्य ने भारत में जन आंदोलन का रूप ले लिया। कहानी शुरू हुई निर्मल गुजरात से और बन गई स्वच्छ भारत मिशन। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक श्री अक्षय राउत जी। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री रोशन गौड़ जी। रोशन जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल गुजरात के बारे में। तो अक्षय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2007-08 में गुजरात ने स्वच्छता को सिर्फ योजना नहीं एक अभियान बनाया। इस निर्मल गुजरात में ऐसा क्या था जो बाद में स्वच्छ भारत का आधार बना?
2: आप जिस बात का जिक्र यहाँ कर रहे हैं वो दुनिया के सामने, भारत से तो शुरुआत हुआ ही, गुजरात से बल्कि शुरुआत हुआ, ये एक नया गवर्नेंस मॉडल का एक देखने लायक चीज है। क्योंकि सरकारें जब बनती हैं तरह तरह तरीके से सरकार चलाती हैं। मंत्रियां आते हैं, मुख्यमंत्रियां आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और सबका पॉलिसी होता है, प्रोग्राम्स होता है। लेकिन ये एक अनोखा तरीके की काम करने की तरीका जो कि गुजरात से शुरू हुआ 25 साल पहले और उसमें पूरा स्केल अप जिसको बोलते हैं, पैन इंडिया बोलते हैं, एक मौका मिला जो कि यहाँ भी 12 साल से उस तरह का जो प्रक्रिया है वो जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में हुआ था उसको लाया गया और आपने स्वच्छता की जिक्र किया। वहां जो मेन कैरेक्टर उसका था निर्मल गुजरात का वो था कि कम्युनिटी को मिलाया जाए। ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है या सरकार के कार्यक्रम है नहीं, ठीक है सरकार अगुवाई करेगा, पॉलिसी बनाएगा, मिशन बनाएगा, पैसा कुछ हो सकता है लगाएगा, लेकिन लोग इसको सम्मान के हिसाब से लें। विलेज कम्युनिटी हो, अर्बन कम्युनिटी हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम सभा हो, ये सब ऐसे मिलकर जुड़े कि ये उनका कार्यक्रम है। क्योंकि उनके बच्चों की हेल्थ के सवाल है, उनकी महिलाओं की इज्जत के सवाल है, सिक्योरिटी के सवाल है, पूरा समुदाय की हेल्थ के सवाल है। और स्वच्छता जो सामने आ जाकर जान नहीं लेता है उसका बहुत दूरगामी जो परिणति होते हैं और वो पता लगा है जब ये स्वच्छ भारत मिशन निर्मल गुजरात से शुरू होके। स्वच्छ भारत मिशन का स्केल ही कुछ अलग था क्योंकि हम लोग 6.5 लाख, गुजरात तो एक स्टेट हुआ, वहां एक प्रयोग हुआ, लेकिन उसको जब देश की जमीन पर लाया गया पूरा 6.5 लाख, उसमें गांव है, करीब 5,000 शहर है और 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, वो एक कुछ अलग से था। लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल के एक और भी एक रूप है कि ये स्केल में बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पायलट में करेंगे, फिर 15 साल में करेंगे, फिर 25 साल में करेंगे, ऐसे नहीं है। यहाँ एक सनसेट क्लस डाला गया। 2014 में जो शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन, चाहे निर्मल गुजरात के प्रयोग से हो, सीकर और भी बहुत सारे प्रयोग है, निर्मल गुजरात उसमें जरूर मुख्य है क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बाद में प्रधानमंत्री बने मोदी साहब, तो वो इस मिजाज को लेकर आए कि हमें स्केल पर करना है, पूरे शहर में करना है, पूरे गांव में करना है, पूरे देश को स्वच्छ करना है। तो 12 करोड़ टॉयलेट बने, उसमें एक्सेस और यूसेज ये दोनों मूल मुद्दे थे और गांव के मुद्दे ज्यादातर थे। ऐसे नहीं कि शहर में समस्या नहीं था, शहर की समस्या में अभी जूझ रहे हैं सेकेंड फेज में, वेस्ट मैनेजमेंट में, कचरा का प्रबंधन में। लेकिन जो पहला फेज था जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुआ, कुछ गुजरात की न्यू बना था, उसमें जो पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स आए और स्वच्छ भारत मिशन का अभियान का शुरुआत हुआ 2014 में लाल किला की प्राचीर से लेकर, वहां एक पॉइंट रखा गया था, एक लक्ष्य कि 2019 तक खुले शौच से मुक्त कराना है देश को। उस टाइम आपको अगर सुनकर अभी भी लोगों को ताज्जुब होगा, हमारे श्रोताओं को, कि 60 करोड़ देश में खुले शौच करने वाले थे जो कि पूरे दुनिया की खुले शौच करने वाले लोगों के 60% था और 2019 में खुले शौच से देश को मुक्त कर दिया गया। सारे

0: अरे गांव, सारे जिले, 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने को डिक्लेयर किए अक्टूबर 2, 2019 में कि हम खुले शौच से मुक्त है, लेकिन अभी भी
1: जी
0: रास्ता सफर बाकी है।
1: बिल्कुल। और अब रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले स्वच्छता को सिर्फ सरकार या सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब लोग खुद कचरा फैलाने से बचते हैं और आसपास सफाई भी रखते हैं। तो अगर हम बात करें गुजरात में स्वच्छता की, तो जमीनी स्तर पर आपको किस तरह का बदलाव वहां पर देखने को मिला है?
2: देखिए, जो 2007 में निर्मल गुजरात योजना शुरू हुई थी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उस समय मुख्यमंत्री थे, तो पहला उनका ये अनुभव था कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और उन्होंने जो निर्मल गुजरात की शुरुआत की, तो उन्होंने कहा केवल सफाई नहीं, इसमें कचरा प्रबंधन भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी भी होना चाहिए और लोगों के पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूरे राज्य को उन्होंने एक साथ जोड़ा और लोगों को उन्होंने इसमें भागीदार बनाया। और वो इसलिए बनाया कि जैसे आपने कहा कि इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और सरकारी सफाई कर्मचारी अगर केवल इसमें भाग लेंगे तो नहीं हो पा रहा था। लोगों की मानसिकता बदली कि ये आपका है, आपको स्वस्थ रहना है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, जो खर्चा आपका बीमारी में खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। और हमने देखा कि जब वो अभियान चला, पूरी हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हुई और कुछ राज्यों ने उसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद भारत सरकार ने भी निर्मल भारत अभियान के नाम से उसको एडॉप्ट किया। और जब प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, तो वहां उन्होंने फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो, जन भागीदारी कैसे हो, इसकी शुरुआत 2007 से निर्मल गुजरात से हुई थी। और उसमें जनता की भागीदारी और वो किस बड़े स्तर पर हो सकता है, वहां से शुरुआत हुई।
1: जी, तो हम चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुन लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। साफ घर, साफ गली, साफ गांव और साफ शहर का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन से है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना था। इसकी शुरुआत सबसे पहले लोगों के घरों में शौचालय की सुविधा पहुंचाने और खुले में शौच की समस्या को खत्म करने पर था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता लगभग 39% थी। वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता हासिल की गई और 2014 से 2019 के बीच 10 करोड़ 28 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। लेकिन श्रोताओं, स्वच्छता का मतलब केवल शौचालय बनाना नहीं है, अब ध्यान इस बात पर भी है कि गांव और शहर कचरे से मुक्त और साफ सुथरे रहें। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में ठोस कचरा और गंदे पानी के प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। 17 सितंबर 2026 तक देश में 5.69 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हो चुके थे। इनमें 5.25 लाख से ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल की श्रेणी में है। वहीं 5.38 लाख से अधिक गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन और 5.65 लाख से अधिक गांवों में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित की जा चुकी है। अब सवाल है कि ODF प्लस का मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्ति नहीं है, गांव में शौचालयों का इस्तेमाल जारी रहे, कचरे का सही प्रबंधन हो, गंदा पानी सही तरीके से संभाला जाए और गांव साफ दिखाई दे, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी दिशा में स्वच्छता ही सेवा अभियान भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 में ये अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इसका जोर लोगों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कचरा प्रबंधन, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा तथा सम्मान पर है। श्रोताओं, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, स्वच्छता के काम में लगे सफाई कर्मचारियों का सम्मान। सफाई कर्मचारी हमारे गांव और शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए स्वच्छता के साथ उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा उपकरण और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हर नागरिक की भूमिका है। घर का कचरा अलग रखना, सड़क पर कचरा नहीं फेंकना, सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना और दूसरे लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत मिशन अब केवल शौचालय निर्माण का अभियान नहीं रहा, बल्कि स्वच्छता

0: कचरा प्रबंधन लोगों के व्यवहार में बदलाव और जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक प्रयास बन चुका है, क्योंकि जब हमारा घर साफ होता है तो परिवार स्वस्थ रहता है, जब गांव और शहर साफ होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, और जब सफाई करने वाले व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा मिलती है तब स्वच्छता वास्तव में सम्मान से जुड़ती है। यही है स्वच्छता से सम्मान तक की यात्रा। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं मनोज।
1: अक्षय जी, आपसे एक इंदौर की अगर बात की जाए तो 7 बार नंबर 1 ये बना, कैसे बना?
2: देखिए, उसका एक मिसाल छोटी सी बताता हूँ। मैं इंदौर बार बार गया हूँ। बोलते हैं झोलाधारी इंदौरी बोलते हैं वहाँ लोगों को।
1: अच्छा।
2: मतलब कोई अगर घर से निकलेगा अपने पास एक झोला लेके जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई कचरा अपना जो अपने जरिए से हो या कहाँ से कचरा दिखा या अपने कोई खरीदा कुछ छिलके निकले तो उसको झोला में लेके घर में आएगा, उसको डिब्बे जो है उसका निपटान करेगा। जबकि भारत अभी तक भी हारा नीला में जूझ रहा है, और स्वच्छ भारत मिशन की जितना काम करते हैं लोग, अर्बन लोकल बॉडीज हो, पंचायत हो, वो लोगों को समझा के थक गए कि भाई हारा नीला, एक सूखा और गिला कचड़े अलग अलग रखो, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो, वेट या ड्राई हो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने और आने वाली जो कचरा प्रबंधन की 26 के रूल्स के मुताबिक 4 अनिवार्य कर लिया, 2 से नहीं चलेगा, 4 करना पड़ेगा। जो स्पेशल कचड़े हैं और सैनिटरी कचड़े हैं उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। लेकिन इंदौर में आप जाएंगे बहुत पहले 6 कचड़ों के डिब्बा होता है लोगों के घर, माने हर कचड़े का अलग अलग तरीके से निकाल कर उसको रोज डालना, उसके लिए समय लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, रिसोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन करते हैं लोग। और क्योंकि जो कचड़ा सेग्रीगेट होता है या जो कचड़ा को भाग भाग अपना तरीके से किया जाता है वो सोना बनता है, वो बोलते हैं ना कचड़ा से कांचन बनता है, लेकिन जो सेग्रीगेटेड नहीं होता है वो बीमारी का जड़ बनता है, क्योंकि वो जाके फिर लैंडफिल में डालता है या रास्ते की साइड में छोटे हिप्स बनते हैं, फिर बड़ा लैंडफिल शहर के बाहर बनते हैं और दुनिया भर का उससे प्रॉब्लम निकलता है। जब तक हम लोग चाहे जो सोर्स है, जो कचरे का सोर्स है, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, कॉलेज हो, मॉल हो या इंस्टीट्यूशनल एरिया हो, जहां अगर जहां से निकलता है कचरा वहां से अगर डिवाइड होकर नहीं रहता है तो प्रॉब्लम है। तो इंदौर में वो होता है। इंदौर के लोगों ने अपने सम्मान के साथ, अपना शहर के सम्मान के साथ सफाई को जोड़ा है। यहाँ तक वहाँ सफाई टूरिज्म होता है, लोग आके देखते हैं कि भाई सफाई यहाँ कैसे हुआ। वहाँ पार्क बने हैं सफाई की, जो कचड़े की जो बहुत बड़ा बड़ा होता है जमावड़ा, उसको निकाल कर एकर्स जमीन निकाल के वहाँ पार्क बना जाता है, और सबसे बड़ा बायोफ्यूल का वहाँ प्लांट भी बना है, क्योंकि उसी से शहर का ट्रांसपोर्ट भी चलता है। और ये एक देखने की जगह है। एक जगह में तो वहाँ एक फूड मॉल्स उन्होंने बनाया है जो कि कचरा की जगह को साफ करके तो वो बना है, और वहाँ की जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो डिग्निटी है, लाइफ कंडीशन है, उनको जो फैसिलिटी है, उनका जो तरीके है, वो देखने के लिए बाहर के लोग जब आते हैं, जो तीर्थ में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, उज्जैन वो इंदौर में एक स्टॉप ओवर लेते हैं कि हाँ देखें। लेकिन मैं आपको एक चीज पर क्वेश्चन करता हूँ, एक इंदौर से देश का काम नहीं चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन के जो मैनेजर्स हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इसको समझते हैं, इसीलिए अभी एक नया बनाया गया है कि इनको गोल्ड लेवल डाल के इनको कॉम्पिटिशन से अलग कर दिया जाए और दूसरों को भी मौका दिया जाए, जैसे सूरत, नवी मुंबई, दूसरे शहर भी आ रहे हैं उसके साथ शामिल होने के लिए। और ये सारे चीज के लिए जो गवर्नेंस मॉडल को मैं फिर एम्फसाइज करता हूँ, जो गुजरात से गवर्नेंस और स्वच्छता में खाली कंसंट्रेट नहीं है, पानी के पर भी है और पंचायती सिस्टम पर भी है, वो जीएसटी सिस्टम पर भी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट पर भी है, हेल्थ डिलीवरी पर है, बहुत सारी चीज जो कि पब्लिक सर्विसेज होते हैं उसका एक तरीका है काम करने का, उसको मैं पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बोलूंगा। भाई आपका पॉलिसी, सब लोग सोचते हैं कि पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन दो है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये गवर्नेंस मॉडल जो 25 साल से जारी है ये भाई खाली पॉलिसी नहीं, पूरा देश में होगा, सब जगह होगा और इम्प्लीमेंट बढ़िया से होगा, इस तरह से चल रहा है, इसलिए स्वच्छता में काम हो पाया है, स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेस के राज है।
1: बिल्कुल, आपने नागरिकों की बात बताई वहां पर, तो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है सरकार और आम नागरिकों के बीच में तालमेल बिठाना, तो जिसे हम सिविक सेंस के तौर पर भी कह सकते हैं, तो वहां के लोगों में सिविक सेंस कैसे जागा?
2: सिविक सेंस ना, ये जो लोगों ने अगर शहर की, या मेरा शहर की बात छोड़ दीजिए, मेरा घर की, मेरा टोली की, मेरा कॉलोनी की, मेरा RWA की, सम्मान के साथ इसको जोड़ूंगा, ये इंदौर वाले जो हैं अपना इज्जत के साथ इसको जोड़ दिए हैं इसे, और वहां जो नेचुरल सिटीजन का रेस्पॉन्स जो है ना बहुत अच्छा रहा है। लेकिन बात है कि ये जो चीज है, ये जो इज्जत की जो अपना जो चस्का, ये बाकी शहरों में भी लगना शुरू हुआ है, लेकिन जितना जल्दी होके लगे तो ये जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन दो अलग अलग इकाई है, और एक महुआ के अंदर है और दूसरा है जल शक्ति के अंदर, मंत्रालय के अंदर, ये काम तो जारी है, लेकिन 1-2 साल में मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का निरंतर

0: प्रयास रहा तो हमारा शहर भी
1: जी
0: आगे आगे ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण को आपने कैसे जाना और क्या इससे नगर पालिकाओं में वाकई काम करने का डर और सम्मान दोनों आया है।
2: जो सर ने भी बात कही है, इंदौर से ही मैं इसकी शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो 2016 में कहा गया कि आप स्वच्छ सर्वेक्षण कीजिए और शहरों के बीच में एक कंपटीशन कराया गया कि जो नंबर एक पे आएगा नंबर दो पर आएगा, तो वो जो है हर शहर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो शुरुआत में 73 शहर थे उसमें, यही इंदौर जो 25वें नंबर पर था 2016 में
1: जी।
2: और 2017 में नंबर एक पर आ गया, और वो सिर्फ इसलिए आया कि उन्होंने जो मानसिकता बदली कि जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर से कूड़ा उठा के किसी एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वो एक जगह फिर धीरे धीरे धीरे वो पहाड़ बनता चला जाता है। तो इंदौर में लोगों ने जो घर घर से कूड़ा उठाना शुरू किया और उसमें उन्होंने, जैसे सर ने कहा कि उन्होंने अलग अलग डिब्बे बनाए, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, सैनिटेशन का अलग, हैजार्डियस अलग, तो उनको ठिकाने लगाना का भी इंतजाम फिर ठीक हो गया। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हुआ, तो ये सर्वेक्षण का फायदा हुआ कि अब इसमें सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने दिल्ली में देखा कि जो नई दिल्ली नगर पालिका है ये तो साफ रहता है, लेकिन जो हमारा दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र है वहां हमने देखा कि अभी भी वहां समस्याएं हैं। तो कंपटीशन में आने के से क्या हुआ कि लोगों की पार्टिसिपेशन तो रहा ही, उनके साथ साथ जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं, इसमें बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इसमें सरकार के बहुत सारे जो विंग हैं, वो सबने मिलकर काम किया। तो उसका सर्वेक्षण का फायदा ये हुआ कि सभी शहर इसमें कंपटीशन में आ गए और कंपटीशन में एक दूसरे से अच्छा कैसा करें, इसलिए शहरों में अच्छा काम हो रहा है।
1: अक्षय जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, इंदौर के बाद हम सूरत की बात कर लेते हैं। तो 1994 में सूरत को प्लेग सिटी कहते थे, लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे। फिर 2006 में तापी में भयानक बाढ़ आई, सूरत ने इस तबाही को मौके में कैसे बदला?
0: आप दूसरी बात पर अभी चले गए हैं लेकिन रिलेटेड है, एक पानी की बात पर चले गए हैं। जो फ्लड था वो तापी रिवर के साथ कनेक्टेड था और उसका गेट खुलने नहीं खुलने पर था, कभी कभी उसका होता है कि वो नेचुरल डिजास्टर था, एक एस्टिमेट किया गया है, हो सकता है कि कोई लोगों का मैनेजमेंट में भी कुछ दिक्कत हो। लेकिन उसके बाद वो 6 है, जैसे भूज का अर्थक्वेक भी हुआ था, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा बाढ़ था, करीब करीब सूरत शहर के काफी एरिया डूब गए थे उसमें। और उससे एक तो एक रिलीफ और रिहेबिलिटेशन क्विक रिस्पॉन्स कैसे हुआ वो एक देखने की बात है। हम अभी स्वच्छ भारत से थोड़ी एक बाहर जा रहे हैं क्योंकि हम फ्लड वाटर गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना गुजरात से स्वच्छ भारत की निर्मल गुजरात के जरिए से सीख आया है, जिसे स्वच्छ भारत बनना है, ऐसे ही नर्मदा का वाटर को लाके पहुंचाना डिफिकल्ट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में, और पानी को रोकना जहां रोकना है, फ्लड मैनेजमेंट करना, और जहां सूखा है वहां पानी देना, और घर घर में टैप पहुंचाने का प्रबंधन करना, इसमें भी उसी टाइम में सरकार जो हम लोग बात कर रहे हैं 2000 से 2012 सरकार की कर रहे हैं, तो उस टाइम में गवर्नेंस में ये प्रयोग बहुत हुए थे और उसकी नतीजा आगे बढ़ाकर अभी जल जीवन मिशन मान लीजिए, जो कि अभी 80% घरों में टैप वाटर कनेक्शन दिया हुआ है रूरल एरियाज में, माने क्योंकि वो पानी की घर में पानी की फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। वो भी गुजरात की ये सारे प्रयोग जो आपने जिक्र किया सूरत वगैरह से, वो क्योंकि पानी बहुत होता है तो लोगों का विनाश होता है, पानी का कम होता है लोगों का प्यास बढ़ता है, विनाश होता है। तो दोनों की चीज को इससे संतुलन करने का, नर्मदा की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को गुजरात के लिए उपलब्ध कराना और जो स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें सहमत लाना, इसमें उस टाइम का गुजरात सरकार जिसमें कि श्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से अगुवाई कर रहे थे, बहुत बड़ा भूमिका रहा है, उससे सीख मिला है। सूरत प्लेग सिटी के नाम में मैंने कष्ट लोगों को बहुत मिला था, और वो प्लेग क्यों हुआ था, सफाई नहीं होने के कारण, उसका मूल कारण सफाई, इसीलिए बहुत अचंबा की बात है। और लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ा है कि जहां प्लेग हुआ था शहर लोग छोड़ दिए थे, शहर का लोग जाना बॉयकट कर दिया था कि भाई गंदगी इतना है कि यहाँ प्लेग होकर लोग मरते हैं, तो वो हुआ भारत की सबसे स्वच्छ शहर, वही इंदौर के साथ कंपटीशन करके आया, क्योंकि काम ऐसे हुआ है। और वो स्वच्छ भारत मिशन की टाइम में हुआ ज्यादातर वहां न्यू पड़ गया था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के टाइम में हुआ, वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रिजल्ट के हिसाब से सूरत 2 साल पहले पहली बार आया वो पैदाने पर, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नवी मुंबई भी आया है, बहुत कुछ शहर और भी कुछ शहर हैं जो आगे बढ़कर आए हैं। इंदौर पहले आया लेकिन इन्होंने सब क्लब अभी अलग अलग कर दिया है, इनको गोल्ड क्लब अलग कर दिया है, क्योंकि सो दैट कि ऐसे नहीं होगी कुछ शहर बार बार और पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं, छोटे छोटे शहरों को मौका मिलता है। मुझे लेकिन लग रहा है कि फिर भी मान लीजिए 4,800-5,000 शहरों में आज की तारीख में जो 3-स्टार रेटिंग बोला जाता है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि हाँ पूरी तरह स्वच्छ माना जाएगा, मुझे लग जाए कई 100 हैं, 1,000 तक भी नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ सफर और भी बाकी है, रास्ता सही है।

0: लेकिन मंजिल थोड़ी और दूर है,
1: दूर
0: लेकिन
1: है।
0: इतना दूर नहीं है कि हो नहीं पाए, क्योंकि इसका संभावना गुजरात में बना, देश में प्रमाणित हुआ, देश खुले शौच से मुक्त हुआ 2019 में, अभी ये कचरे से भी मुक्त होगा, क्योंकि नियत और जो मेहनत वो
1: जी
0: दोनों चल रहा है। लोगों को थोड़ी सी और जोड़ना है, और भी जैसे अब देखिए गांव के लोग जितना बढ़िया से जुड़ गए फेज वन
1: हाँ
0: में, शहर के लोग इतना बढ़िया से अभी जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसीलिए फेज वन की जो आग है लोगों की, जो इग्नाइट फायर था, वो फायर को वापस लाना
1: वापस
0: पड़ेगा
1: लाना
0: चाहेंगे।
1: बिल्कुल। और महात्मा गांधी का जी का मानना भी था कि अपने अंदर की स्वच्छता एक पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। और वैसे भी हर घर में स्वच्छता पहले ही पढ़ाई जाती है
0: बिल्कुल
1: कि स्वच्छ
0: बिल्कुल,
1: रहना है।
0: क्योंकि एक चीज आप देखिए,
1: जी
0: जैसे भूख हुआ, नींद हुआ, ये
1: जी
0: कंजेनिटल है, ये जो बच्चा जन्म होता है उसको जरूर भूख होगा,
1: हाँ
0: सोएगा, लेकिन सफाई नहीं करता है,
1: नहीं
0: सफाई शिक्षा से आता है।
1: जी
0: घर के बड़े जो हैं, चाहे बड़े भाई हो, पिताजी
1: बिल्कुल
0: हो, माँ बहन हो, तो छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि भाई सफाई तुम्हारा काम है, तुम साफ रहो और साफ करते रहो चारों तरफ। ये विदेशों में, सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में ये इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। तो हमारे परिवार, ये जो, क्योंकि ये अपने आप बायोलॉजिकली नहीं आता है, ये सोशियली आता है, एजुकेशनली आता है। इसीलिए जो कैंपेन है, इसलिए प्रधानमंत्री बार बार, कभी ऑफिशियली इसका नाम है
1: जी
0: स्वच्छ भारत मिशन,
1: जी
0: लेकिन वो बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो हमेशा बोलते हैं, क्योंकि ये कैंपेन है,
1: कैंपेन
0: निरंतर चलता रहेगा, लोगों को उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में भी जिसको स्वच्छ भारत मिशन के लिए सक्सेस का न्यू माना गया है, 4 P, फर्स्ट पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, वो हमेशा आगे रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन में, सबको, वो सबसे टॉप कम्युनिकेटर, टॉप लीडर्स, वो स्वच्छ भारत मिशन उनका दिल की स्पंदन है, ऐसे
1: जी
0: मुझे लग रहा है। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, कभी सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर देश में इतना पैसा नहीं लगा था जितना पैसा इन्होंने दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी दिया है। तीसरा है पार्टनरशिप, क्योंकि ये कोई छोटा मंत्रालय का काम नहीं है, सारे मंत्रालय, सारे कॉरपोरेट, सारे मीडिया, सारे सिविल सोसाइटी लोग और सारे इंटरनेशनल एजेंसी मिलकर करेंगे पार्टनरशिप। और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ है पीपुल्स पार्टिसिपेशन, और लोग, ये लोगों का मूवमेंट है, लोगों को संभालना पड़ेगा, लोगों को साफ होना पड़ेगा, लोगों को साफ करना पड़ेगा, साफ नहीं तो माफ नहीं।
1: बिल्कुल। अब रोशन जी, अब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि जब हम सफाई मित्र की बात करते हैं, सुरक्षा, वेस्ट मैनेजमेंट, महिलाओं की गरिमा की बात करते हैं, तो स्वच्छता का अर्थ कैसे बदला?
2: देखिए, इसमें दो तीन बातें समझनी जरूरी है।
1: जी
2: पहले, हम, चूंकि मैं गांव से आता हूं, तो हम लोग खुले में ही शौच जाते थे,
1: जी
2: और गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे,
1: जी
2: इसके कारण होते थे, इसलिए महिलाएं अंधेरा का इंतजार करती थी। और प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लाल किले की प्राचीर से भी यही कहा था कि महिलाओं को जब इंतजार करना पड़ता है, या तो सुबह उनको जाना
1: अर्ली
2: पड़ता है
1: मॉर्निंग
2: और या फिर
1: एग्जैक्टली
2: उनको शाम को इंतजार करना पड़ता है, इसके कारण उनके कई बीमारियों से जूझती हैं। तो अभी मैं आंकड़े पढ़ रहा था WHO के, तो WHO ये कहता है कि कम से कम 3 लाख मौतें हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से बची हैं,
1: जी
2: उनकी बीमारियां दूर हुई हैं। और प्रति घर से अगर हम अनुमान लगाएं तो 50,000 रुपए की दवाइयां जो लोग खाते थे वो बची हैं। और इसके अलावा जो सर्कुलर इकोनॉमी,
1: जी
2: जो भी सर बात कर रहे थे कि कचरा है, कचरे का ढेर लग रहे हैं, तो अभी केवल हम उसको कचरा नहीं मान रहे, यानी जो वेस्ट टू वेल्थ, जो हमारा कचरा है, उसको हम कैसे उसकी उपयोगिता करें, तो अभी हम उसे बिजली बना सकते हैं, हम उसे सड़कें बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्कुलर इकोनॉमी पे भी फोकस जा रहा है। तो जब ये अभी स्वच्छ भारत अभियान 2 जब शुरू हुआ था, तो उसका जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस जो चल रहा है, तो उसमें यही है कि जो ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, जो आपका तरल कचरा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए कि ताकि उसका वेल्थ हम बना सकें। और चूंकि अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है और इतनी बड़े पैमाने पर है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में तो 90% शहरीकरण हो गया है और ये सब जगह होने वाला है, तो उसमें जो कचरा प्रबंधन है वो सबसे बड़ी चुनौती, जैसे सर अभी कह रहे थे। तो अगर कचरा प्रबंधन, जो अभी हमारे पास आंकड़े हैं कि 1,58,000 टन प्रतिदिन हमारे यहाँ ये कचरा पैदा होता है, जिसमें से हम 1,31,000 टन हम इसको ठिकाने लगाते हैं, लेकिन अभी भी करीबन 27,000 टन प्रतिदिन है जो अभी बच जाता है, तो उसको ठिकाने लगाने की चुनौती है। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हम उसका बिजली बना सकते हैं, हम उसका दूसरे उपयोग कर सकते हैं, तो अगर हम उस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, तो आप सोचिए कि हम फिर जो हमारा कचरा है, जिसको हम कचरा कहते हैं, वो हो सकता है कि फिर हमारे वो सोना बन जाए।
1: बिल्कुल। तो अगर हमने अभी पहले शौचालय की बात करी और अब कचरा प्रबंधन की आपने उसके बारे में हमें बताया, तो अब हम हाइजीन पर आ जाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, हाथ धोना हो चाहे सैनिटरी नैपकिन का सही निपटारा हो, तो ये अभी भी शर्म की बात समझी जाती है, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी तो जो स्वच्छ भारत अभियान प्लस प्लस है, उसमें ये अलग है कि आप सैनिटेशन जो पैड वगैरह है, इनके लिए इनको इनका जो इनका प्रबंधन अलग से होना चाहिए। और स्वच्छता के साथ अगर वो सफाई, सफाई केवल ऐसा नहीं कि आपको जो है शौचालय आपके घर में बना दिए, उसकी स्वच्छता

0: क्योंकि स्वच्छता सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से है। और जैसे मैंने कहा कि अभी WHO के जो आंकड़े हैं
1: जी
0: कि लोगों की जो बीमारियां होती थी उन बीमारियों से जो हमारी मृत्यु दर है,
1: जी
0: जो बच्चों की जो इन्फेंट्री जो डायरिया
1: डायरिया
0: है,
1: जी
0: हैजा है, आंत्रशोथ होता था, वो सारों में बचत हो रही है। और हम मोटा मोटा तौर पर लगाएं, अगर आप हॉस्पिटलों में चले जाते थे उस वक्त, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, तो मोस्टली जो केसेस होते थे वो डायरिया के होते थे, हैजा के होते थे। अभी तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल के अंदर हमने हैजा के केस सुने, पहले कितने
1: जी
0: केसेस होते थे। तो कम से कम ये स्वच्छ भारत अभियान की बहुत बड़ी सफलता है कि लोगों को हैजा नहीं हो रहा है, डायरिया नहीं हो रहा है।
2: ये सारे जो स्टडीज हैं ये कहता है कि इंडिया को कितना इससे फायदा
1: जी
2: हुआ है, बच्चों को काफी फायदा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट का जो बचत की बात हुआ उन्होंने कहा है, और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन उसमें बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि जो खुले में शौच होता है वो ग्राउंड वाटर का अफेक्ट करता है, फिर वो कुछ चीज के जरिए से, पानी के जरिए से इंसान
1: जी
2: के अंदर जाता है, उससे बहुत हेल्थ से फर्क पड़ा है। खाली इंडियन एजेंसीज नहीं, बाहर की एजेंसीज, बाहर की जो बड़े बड़े हेल्थ के मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज हैं, वो भी इसको एस्टैब्लिश किए हैं,
1: जी
2: तो बहुत तरह तरह के फायदा मिला है। गंदगी रहने की या हाइजीन का बात
1: जी
2: आपने कहा, अगर हैंड वॉश नहीं करें तो हैंड वॉश नहीं करने का इसका सारा जो इम्पैक्ट है कुछ टाइम के बाद होता है और इमीडिएटली नहीं दिखता है, तो वही तो खराब बात है।
1: हाथ जो है मुंह में लगाना, ये सब चीजें भी
2: हाइजीन का
1: स्वच्छता में
2: कॉन्सेप्ट
1: आती
2: है,
1: है,
2: इसको इसलिए
1: हाइजीन।
2: वॉश बोलते हैं, वॉश को एक सेक्टर माना जाता है,
1: जी
2: वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वो साथ में देखा जाता है, तीनों चीज इंटरनेशनली नेशनली जहां प्रोग्राम होता है ये तीनों चीज एक साथ रहते हैं, क्योंकि तीनों चीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है।
1: जी
2: तो हाइजीन का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जैसे कहा कोविड के समय में आया, बिकॉज हाइजीन के बिना आप मर जाएंगे, आपको लगा कि, और लोगों को उस टाइम में यही तो विडंबना है कि लोग जो अच्छी चीज है वो डर कर ही जानते हैं, भाई ये नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हाथ
1: जी
2: धोना है,
1: जी
2: नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसी तरह का अगर इनको लोगों को इस तरह का, इसको ट्रिगर्स बोलते हैं, बिहेवियर चेंज के बाद आपने कहा लोगों का,
1: जी
2: उसमें ट्रिगर्स क्या है, माने कभी आपका जागरूकता किस ट्रिगर से, कभी डर कर करते हैं, कभी बोलते हैं कि नहीं प्यार से, जो भाई बहन का, भाई जब आप जानते हैं शौचालय, शौचालय का जो मूवमेंट चला था पहला
1: जी
2: 5 साल 14 से 19 तक, उसमें बहुत सारे रक्षाबंधन में भाई बहनों को टॉयलेट्स दिए हैं गिफ्ट में, और शादियों में जैसे गिफ्ट देते हैं तो उसमें भी टॉयलेट्स दिया गया है।
1: जी
2: तो माँ की बेटे के लिए जो प्यार है, बच्चों को रखने के लिए, बच्चे के आदर करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, तो उसका एक निशान है कि उसका उसका जो सैनिटेशन एस्पेक्ट है उसको ठीक से ख्याल रखा जाए, ये सब चीजों को मानना पड़े। तो बिहेवियर जो चीज है बहुत बड़ा चीज है,
1: जी
2: क्योंकि सस्टेन करना है अगर आगे, इसमें बिहेवियर को तो मजबूत करना पड़ेगा,
1: जी
2: खाली एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से नहीं होगा। इसलिए स्वच्छ भारत मूवमेंट को लार्जेस्ट सैनिटेशन मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लार्जेस्ट इन बिहेवियर चेंज मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।
1: तो सर 2047 तक विकसित भारत के लिए स्वच्छता का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए?
2: कंप्लीट, मतलब मुझे लग रहा है कि स्पॉटलेस कंट्री होना चाहिए, स्पॉटलेस, जैसे आप जाते हैं ना,
1: जी
2: आप विदेश में क्या जाते हैं, जब कोई आइकॉनिक प्लेस जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जाते हैं,
1: जी
2: बड़े बड़े अरे क्या साफ सफाई है बोलते हैं ना, ऐसे भी इंडिया में हर शहर, हर जगह जहां फुटफॉल है, टूरिस्ट सेंटर हो, पिलग्रिमेज सेंटर हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, जहां पब्लिक एरिया हो, पार्क हो, रेलवे स्टेशन हो, लोग जैसे उनको लगे कि ये सबसे साफ साफ जगह है, इंसान कहां भी बैठ सकता है, कहां भी खड़ा हो सकता है, कहां भी बदबू नहीं आ रहा है, जो बोलते हैं अर्थ एयर वाटर, तीनों चीज जो है हमारा साथ जुड़ा हुआ है, ये तीनों चीज ही कंप्लीटली साफ रहे, ये मेरा 2047 को मैं जब विकसित भारत देखूंगा, मैं जानूंगा कि मेरा देश की हर मिट्टी, हर हवा, हर पानी साफ हो, हर शहर साफ हो, संपूर्ण तरह से, एक है ना कंप्लीट क्लीनलीनेस, एक है स्वच्छ, एक है कंप्लीट क्लीनलीनेस, और पूरा संपूर्ण तरह से स्वच्छ हो हर गांव, हर शहर।
1: और रोशन जी, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सफाई जो कर्मी हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलती है, पीपी किट मिलती है, उनके बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसे लगता है कि देश उसे देख रहा है, तो क्या स्वच्छता से सम्मान तक का सफर यही है?
0: असल में जो सफाई कर्मचारी हमने अपनी आंखों से देखे हैं,
1: जी
0: और चूंकि जब हम कवर करने जाते हैं
1: हाँ।
0: तो हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं कि सफाई कर्मचारी सीवर में जाते हैं तो उनके गैस के कारण उनकी मौत
1: हाँ,
0: हो जाती
1: ये
0: है।
1: सबसे बड़ी चुनौती थी, बहुत लोगों की मौतें हो जाती
0: बहुत
1: थी,
0: मौतें हुई और उसमें फिर सुधार हुआ कि उनको पीपी किट मिलना चाहिए, और वहां अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है उसमें, गवर्नमेंट ने भी उसमें नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी इंसान गटर के अंदर नहीं जाएगा, मशीन से सफाई होगी। और देखिये मेंटेलिटी बदलने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने उनको सफाई मित्र कहा कि आप उनको सफाई कर्मचारी मत कहिए, क्योंकि असल में वो आपका कचरा उठा रहे हैं, वो आपके सब जो काम आपको करना चाहिए आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो आपका बदले आपका काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी तो बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनको तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितनी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जितनी उनके बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो उतना मुझे लगता है कमी कम होगा। एक बात और जो अभी आपने कही कि भय जरूरी है, जैसे अभी कोविड में भय था तो लोगों ने अपने हाथ पांव धोना और सैनिटाइज करना जरूरी था, एक भय और दिखाना जरूरी है कि अभी जैसे हमारी सरकार ने कर रखा है कि अगर

0: कोई सार्वजनिक जगहों पर अगर थूकता है तो उस पर 200 रुपए का जुर्माना है, लेकिन असल में ये हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पान खाने वाले लोग बहुत हैं, और जितना सरकार साफ करे, लोग साफ करें, कोई ना कोई पान की पीक मारकर उसे गंदा कर देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ दंड और डर दोनों, भय भी जरूरी है और दंड भी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो 2047 तक पूरा हमारा भारत बहुत सुंदर दिखे और हमारे गाँव बहुत खूबसूरत दिखे, जितने हमारे जो मॉन्यूमेंट है, हमारे जो टूरिस्ट स्थल है, उसमें जो सरकार ने भी पीपीपी मॉडल शुरू कर दिया है कि वो कोई भी कंपनी आकर सीएसआर मॉडल के तहत किसी भी, जैसे लाल किले को, ताजमहल को, किसी को भी वो एडॉप्ट कर ले, उसकी साफ सफाई का अपने हाथ में ले ले।
1: काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी और ज्यादा होने की जरूरत है। और लेकिन ये हमेशा डिबेट रहेगा कि ये पनिशेबल क्या जाना चाहिए एजुकेशनली। जनरली हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है। हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा। हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन

0: really, हमारे डेमोक्रेटिक इथर्स के साथ ये सारे चीज, क्योंकि इतना 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें कौन कितना करता है, तो इस तरह का जो लोकल गवर्नमेंट का जो अधिकार के अंदर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये फिर अपने आप में रेस्पॉन्ड करने वाले जो है ना, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है,
1: हाँ.
0: हम तो कुछ सोचे ना भाई, खाली कंप्लेन करने से थोड़ी होगा, हम कुछ सोचे, प्रदूषण के बारे में कंप्लेन करेंगे, कचरा के बारे में कंप्लेन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर, वो है एक जिम्मेवारी की बात है, वो बहुत जरूरी है स्वच्छ भारत मिशन के कॉन्टेक्स्ट में।
1: बिल्कुल अक्षय जी, आपने बहुत अच्छी चीज ये बताई है, तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को जीरो वेस्ट नेशन बनाने के लिए क्या मंत्र होना चाहिए?
0: जीरो वेस्ट नेशन एक तो है कि बहुत एक गांधीयन फिलोसफी था, वो बहुत अभी भी सरकार की पॉलिसी के तहत है, RRR, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। रिड्यूस जो है गांधीवादी है, भाई आप कंजम्पशन को कम करिए ना, लोगों का कंजम्पशन का माहौल बढ़ रहा है, लेकिन रीयूज रिसाइकल जो है, ये दोनों खासकर रिसाइकल, रीयूज का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन रिसाइकल जो है सोने कुछ भी चीजें, सर्कुलर इकोनॉमी की बात हुआ, सारी चीज को रिसाइकल करने का मैं देख रहा हूँ। वेस्ट कम से कम जनरेट करें, आपने जीरो वेस्ट कंट्री के बारे में बताया, कम से कम जनरेट करें, हमारा घर हमारा दफ्तर हमारा जगह से वेस्ट कम निकले, और जो निकले उसका निपटान होने का प्रिंसिपल लेके, स्ट्रैटेजी लेके, टेक्नोलॉजी लेके, रिसोर्स लेके, क्यों इसका निपटान तो जरूरी होगा, जितना निकले कम निकले और जब निकले निपटान हो, यही होने से जीरो वेस्ट होगा।
1: तो अंत में हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे आम नागरिकों के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहें तो।
2: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अभी ई कॉमर्स के जमाने में इतना ज्यादा वेस्ट घर पर आ रहा है, चाहे वो थैली के जरिए आ रहा है, चाहे प्लास्टिक के जरिए आ रहा है, उसका कम से कम इस्तेमाल हो, और जितने हमारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको भी निर्देश दिया जाए कि आप जो अत्यधिक प्लास्टिक भेज रहे हैं, पैकेजिंग भेज रहे हैं, उसको कम से कम किया जाए।
1: बिल्कुल, क्योंकि बेहतर साफ सफाई से ही भारत के सिर्फ गाँव के लिए नहीं मुझे लगता है अक्षय जी, बल्कि शहरों को भी आदर्श बनाया जा सकता है।
0: मेरा इतना ही मैसेज रहेगा कि आप घर के अंदर साफ सफाई का काम अपने आप करें, और अपना घर के आसपास की साफ सफाई अपने आप करें, और दूसरी बात है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें या नहीं करें, और घर की कूड़े का जरूर सेग्रीगेट करें खुद।
1: तो श्रोताओं, निर्मल गुजरात ने कैसे राह दिखाई आज हमने जाना, स्वच्छ भारत ने उसे कैसे जन आंदोलन बनाया, और सूरत जैसे शहरों ने साबित किया कि अगर जन सेवा की नियत हो तो कचरे से भी कंचन बनता है। स्वच्छ भारत सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं, हर नागरिक के सम्मान की कहानी है। इसी के साथ जन सेवा से देश सेवा की आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप स्टूडियो में रहे।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: तो फरहत नाज को भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 7वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, स्वच्छता से सम्मान तक। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौड़। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता फरहत नाज। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय 9:46 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

मोहम्मद इरफान की आवाज़ में अभी आपने किक फिल्म का ये गीत सुना, जिसे लिखा था मयूर पुरी ने, वसंगी से सजाया था हिमेश रेशमिया ने। अब आपको सुनवाते हैं सिंगम रिटर्न्स फिल्म का गाना, अंकित तिवारी और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। बोल संदीप नाथ के हैं व धुन बनाई है अंकित तिवारी ने।

जसलीन कौर रोयल की आवाज़ में ये था खूबसूरत फिल्म का गाना, जिसे लिखा था अमिताभ वर्मा ने व संगीत से सजाया था स्नेहा खान वलकर ने। श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

SMS My Choice कार्यक्रम में मैं शवाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप भी इस कार्यक्रम के जरिए अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें SMS भेजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000947423400। तो चलिए फिर सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत राब्ता फिल्म से। इस गीत की फरमाइश की है अकोला से अंजुम ने। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अगली फरमाइश आई है उदयपुर राजस्थान से, रेणु यादव, मोहित, नमिता, कार्तिक, शानू और संजू की। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं काश फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, ये था 20 साल बाद फिल्म का गाना। इस गीत की फरमाइश की थी पश्चिम सिंहभूम छाई भाषा झारखंड से शिवा गो प्रेम शिवान, संगीता लिपि और दीपाली। लिटिल अंडमान से अमित, रीता, रेबा और कौशिक। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं मलाल फिल्म का ये नगमा।

0: श्रोताओं, अभी आपने कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत सुना। इस गीत को सुनने के शौकीन थे हमारे ये दोस्त बम्बू फ्लैट श्री विजयपुरम से अजीज़, नेहा और बबलू। श्रोताओं, अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: ब्रेक के बाद SMS My Choice कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। श्रोताओं, हमें अगली फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नेपा नगर MP से। सुदर्शन पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन मंगल और राजेंद्र की। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना।

जगत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, हप हप, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, हप हप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

आइए अब सुनते हैं पाकीज़ा फिल्म का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मैसेज भेजा है दादा भाऊ रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू, मिफ्रा बेबी, चाहत और सदिया।

अब सुनिए तुम बिन फिल्म का गाना। इस गीत की फरमाइश की है बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, संगीता शाक्सी, अंजलि बाला साहेब, जयश्री रामनिवास, धनंजय और पीबी कुलथे।

सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक, हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है लोफर फिल्म का ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत दिल का रिश्ता फिल्म से। इस गीत की फरमाइश हमें आई है रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नयाब और लड्डू का।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1379वीं कड़ी।

0: बदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी।
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओं, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी

0: पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
1: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी।
0: जी,
1: फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था।
0: बिल्कुल।
1: और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
0: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
1: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए,
0: जी,
1: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा,
0: जी,
1: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
0: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
1: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
0: जी,
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी,
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना, वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक, सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी,
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल।
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा, तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा, ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।

0: मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
1: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
0: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
4: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए

0: सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
1: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
0: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए। जरा सोचिए, सोचिए, सोचिए।
1: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
0: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
1: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
0: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
1: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमाकर कहा,
2: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
1: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
3: माँ, ये चिट्ठी।
1: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
0: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
3: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
0: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
3: अच्छा,
0: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
3: अच्छा,
0: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
1: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
0: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
1: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
0: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
1: ओह, मैंने यथा

0: संभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
1: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
1: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद

0: भीतर मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ मुझे यानी अजीत
1: और विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1379वीं कड़ी सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने बहार फिल्म से लिया था, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने व संगीत से सजाया था SD बर्मन ने व आवाज़ थी शमशाद बेगम की। अब आपको सुनवाते हैं कुंवारा बदन फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं व धुन बनाई है घनश्याम ने।

0: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगरपालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, इस समय आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुन रहे हैं।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये था हम शक्ल फिल्म का गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने। अब आपको सुनवाते हैं शाम तेरे कितने नाम फिल्म का गाना जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीतकार अनजान व संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में ये था हम शक्ल फिल्म का गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने व संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने। अब आपको सुनवाते हैं श्याम तेरे कितने नाम फिल्म का गाना जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीतकार अनजान व संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को

जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्र स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

साहिर लुधियानवी का लिखा एवं रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ ये था दूर का चांद फिल्म का गाना। आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। अब आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की व संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ठोकर फिल्म का गाना तलत महमूद की आवाज़ में। गीतकार मजाज व संगीतकार हैं सरदार मलिक।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर

में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आज के हमारे फनकार थे प्रद्युम्न शर्मा और ताहिरा सईद।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

इस कार्यक्रम में मैं शवान आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप भी अपने पसंद के गाने सुनने चाहते हैं तो अपना नाम, पता, फिल्म का नाम व गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000, 9474234000।

तो चलिए फिर सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, मैंने प्यार किया फिल्म से। इस गीत की फरमाइश हमें आई है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता कीसू अर्णव और सत्यम की।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे ये सभी दोस्त, श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कृति और भूमिका।

ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरा मणि, प्रणय और प्रतिभा ताई, हमारे इन दोस्तों ने फरमाइश की है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के इस गीत की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: ब्रेक के बाद फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे अगले फरमाइश करता है नादेड़ यताना महाराष्ट्र से शंकर लाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति। हमारे ये दोस्त सुनना चाहते हैं साथी फिल्म का ये नगमा।

अब सुनिए मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का गाना। सुनने के शौकीन हैं मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस।

यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे। हमारे इन दोस्तों ने सुनना चाहा है खामोशी फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, और ये है कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी हो।

0: Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही

0: गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश

0: मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10-15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22-23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35-40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्षेत्र ओडिशा में आज मूसलाधार का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है।
2: मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
4: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं को मौसम के बारे में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है। इस बीच वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वहीं मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान सागर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिसके चलते मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र में ना जाएं। परसों सुबह तक के मौसम के बारे में अनुमान है कि द्वीपों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इस समय 2:33 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में 4:00 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर 4:00 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

दोस्तों, नॉन स्टॉप म्यूजिक के इस कार्यक्रम के सफर में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबाना। दोस्तों, गीतों से भरे इस सफर का आप लुत्फ उठा पाएंगे अब से लेकर दोपहर 3:30 तक, लेकिन बीच में ब्रेक लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद ही ये गीतों से भरा सुहाना सा सफर यूं ही चलता रहेगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए निकल पड़ते हैं गीतों से भरे इस सुहाने से सफर में शबाना के साथ।

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: दोस्तों, नॉन स्टॉप म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप पीके, जिद, मर्डर, सिंघम गोलमाल रिटर्न्स, मर्डर टू, पार्टनर, बजरंगी भाईजान, मैं तेरा हीरो, प्रिंस और बॉडीगार्ड, इन सभी फिल्मों के गीतों का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ ही नॉन स्टॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: Non-stop music.

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। समय हुआ है दोपहर के 3:30। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

यूं ही गाते रहो कार्यक्रम का ये सफर आज आप तय कर रहे हैं शबाना के साथ। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि प्यार का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, कभी खामोशी में, कभी मुस्कान में नजर आता है। दिल जब किसी के लिए धड़कने लगे तो हर पल खास लगने लगता है।

दोस्तों, समंदर की लहरों की तरह जिंदगी भी हर पल बदलती रहती है। कुछ पल बस महसूस करने के लिए होते हैं और वही पल सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि दो दिलों के बीच का एक खूबसूरत रिश्ता होता है। जहां अपनापन हो और भरोसा हो, वहीं रिश्तों की असली खूबसूरती होती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4 बजे है। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इंग रे तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारे प्रोग्राम तहांग मिन का तलोन ही इंग हरप हॉय हांगरन मने चोग महावट करे नलक एल हॉय निकुन पनाम ही एमवी जॉली बॉय

0: ngachin ta ihang ngam program tahale leng hat re tin ke ha ihang atel nga ngina chinta mu hek inura changro ngi ta kasa ta ta kauksin rong ngi ta la sakama ngachien
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. आज हम रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ऐसे रिश्ते जो माता पिता और अपने यंग चिल्ड्रन के बारे में है. रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स. पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है

जिसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसमें भी अगर बच्चा टीनेज यानी 13 से लेकर 19 साल के बीच है तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है। वजह यह है कि इस दौरान उनमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं। दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे की शिक्षा ऐसी पड़ाव पर होती है जिससे उसका पूरा करियर तय होता है। टीनेज में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से बच्चे के सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इससे बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनुशासीन हो सकता है। इस उम्र में बच्चे अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। यही कारण है कि वे बड़ों से अपनी कुछ बात छुपाने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सलाह को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चों को भविष्य में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए टीनेज के दौरान बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आज रिलेशनशिप प्रोग्राम में, खासकर आज लम्हे के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंट टीनेजर रिलेशनशिप के बारे में। इस प्रोग्राम में टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग की साथ ही जानेंगे कि टीनेजर बच्चों की पेरेंटिंग में माता पिता की क्या भूमिका है, क्या किरदार है। इस उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर और दोस्तों से ज़्यादा करीब होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना कि उनके दोस्त समझ सकते हैं। एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक टीनेज बच्चों की परवरिश परिवार के लिए सबसे कठिन चुनौती में से एक है। हार्मोन में बदलाव और शारीरिक परिवर्तन जैसे चीज़ें से जुड़े रहे टीनेजर्स को लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, खासकर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं। इससे वे अकेले और भ्रमित महसूस कर सकते हैं। वही पेरेंट्स इस बात से परेशान हो सकते हैं कि उनका बच्चा अब पहले की तरह अनुशासित नहीं है। कई बार ये चीज़ें बच्चे और पेरेंट्स के बीच मनमुटाव के वजह भी बन जाती है। इसलिए टीनेजर्स की पेरेंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे बदलाव आते हैं टीनेज में। टीनेज के दौरान बच्चे में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि ये बदलाव शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरह के हो सकते हैं। टीनेज बेहद नाजुक उम्र होती है। इसमें बच्चे नए दोस्त बनाना, नई नई चीज़ों को जानना, समझना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा उनमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, दोस्तों की कंपनी ज़्यादा पसंद आती है, गैजेट से अधिक लगाव होता है, खान पान से जुड़ी आदतों में बदलाव होता है। इस उम्र में बच्चे किसी भी नई चीज़ को जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वे बिना किसी की सलाह के खुद से निर्णय लेने चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टीनेज में बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। इसमें माता पिता ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जिससे वे कोई भी निर्णय बिना पेरेंट्स की सलाह के न लें। टीनेज में बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है। ऐसे में माता पिता को बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए कि वह कब कहाँ आते जाते हैं, मोबाइल फ़ोन में क्या देखते हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार ज़रूर कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। दैट टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब बच्चे बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड रहकर, अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उनकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके। उन्हें पर्सनल स्पेस दे, लेकिन दिनचर्या पर नज़र बनाए रखें। गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर लिमिट तय करें। ये भी जानकारी रखें कि

वे अपने फोन में क्या देखते हैं, उन्हें अपने मन की बात शेयर करने के लिए प्रेरित करें, उनके सपने और लक्ष्यों का सपोर्ट करें, उन्हें हेल्थी डाइट और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें, उन्हें स्वतंत्रता दें लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाएं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारने पीटने का तरीका अपनाते हैं जो बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। वे माँ बाप से डरने लगते हैं और उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं। इसके अलावा माता पिता टीन एजर बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ और गलतियां करते हैं जिनसे बचना चाहिए। इसे कैसे समझे हम टीन एजर्स के पेरेंट्स में न करे कैसे गलतियां, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा न पेश आए कि बच्चे बात करने से डरे, उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करें, उसे हर चीज के लिए मना न करें, किसी बात पर चिल्लाए या गुस्सा न करें, बच्चों को मारने पीटने की गलती कभी भी न करें। दोस्तों, अगर बच्चे जवाब देते हैं तो डांटे नहीं, समझिए उन्हें। कभी आप भी ऐसे थे, आप भी उस किशोरावस्था से गुजर के ही अडल्ट बने और उसके बाद एक पेरेंट। अपने बचपन और अपने यंग डेज को याद कीजिए। टीनेजर बच्चों के पेरेंटिंग के लिए कुछ सुझाव है जो लम्हे प्रोग्राम में चेतन आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर और आर्ट जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। एनकरेज देम टू लर्न फाइन आर्ट्स टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद प्रोडक्टिव वर्क। उनके अच्छे प्रयासों और उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें। उन्हें लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। उन्हें उनकी पसंदीदा एक्टिविटी करने दें, उन पर लगाम न लगाएं। उन्हें एक्सरसाइज करने और हेल्थी डाइट लेने के फायदे को एक्सप्लेन करें। बच्चे से सड़क पर सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बात करें। उनसे ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग के खतरों के बारे में एक्सप्लेन करें। काउंसलिंग दें। किशोरावस्था बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिश्ते में तनाव आने की संभावना होती है। जब माता पिता पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। टीनेजर्स बच्चे मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में टीनेजर्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार ही सही राह दिलाती है, वरना मामला बिगड़ जाता है। टीनेजर्स बच्चों को दोस्त बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ खास बॉन्ड डेवलप करना होता है। ऐसा करने से रिश्ते एक अलग मुकाम हासिल करता है। उनकी रुचि में रुचि दिखाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपको उनके शौक के बारे में पूरी जानकारी हो, बस दिलचस्पी दिखाएं। शो इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, लाइक देयर हॉबीज, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस, गोल्स, और उनका समर्थन करने के लिए जितना हो सके भाग लें। With this information about parents and teenage relationship in today's Lamhe program, we come to the conclusion now. And I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye. Call or message us on 0951522709. That's 0951522709. Or write to us at feedbackamc1@gmail.com. That's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla. That's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 17वीं कड़ी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीविजयपुरम केंद्र है। 4:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम आप सुनेंगे 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे वीलन ओलगम। बंगला कार्यक्रम में 5:30 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में सीपी घाट की घरेलू बागवानी करने वाली महिला श्रीमती शीला देवी से की गई बातचीत आप सुनेंगे। आंगन में हरियाली, जीवन में खुशहाली। क्षेत्रीय

समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम सेवा संकल्प अभियान सागरमाला आप सुनेंगे 6:30 पर। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं बताया जाएगा। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में आप पत्रिका कार्यक्रम सुनेंगे युवा संसार। रात 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आनंद ले पाएंगे। रोजगार समाचार व गौरवगान का समय रहेगा 8:30 और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीत। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड, 9:45 पर इनसाइट्स तथा रात्रि 10:00 जापान में खेले जा रहे विश्व एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। ये तो थे आज के इस सभा के शेष कार्यक्रम। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल सुबह 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। एग्री टिप्स में जानेंगे बकरी पालन से लाभ विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर जलियानों के यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जीत शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुनेंगे। गांधी चर्चा का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी रानू मुखर्जी। फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह 9:00। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश सोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10:00। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT। निकोबारी कार्यक्रम में सूचनाओं के अलावा आप सुनेंगे लोकगीत 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में आप विभिन्न कार्यक्रम को सुनेंगे। मलयालम कार्यक्रम में 12:30 पर आप सुगम संगीत सुन सकेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम में कवाल होंगे मास्टर हबीब कवाल निज़ामी और बशीर अहमद। आपके नाम फिल्मी पैगाम फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम का समय रहेगा 1:30। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा का समापन होगा, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारा स्थानीय प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप एक ही श्रोता के पसंद पर गीत सुनेंगे। 5:30 पर बंगला कार्यक्रम में आप आधुनिक गीत सुन सकेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:00 NC चौधरी के साथ की गई बातचीत आप सुनेंगे घर के पिछवाड़े पालने योग्य मुर्गियों की नस्ल। 6:30 पर समाचार तरंगणी प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 6:45। 6:55 पर कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:20 पर दिल ने फिर याद किया फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। युवाणी में फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फ्रेंड्स, साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर चर्चा आप सुनेंगे 7:30 पर। रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार व गौरव गान का समय रहेगा 8:30। रात 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स तथा रात्रि 10:00 जापान में खेले जा रहे विश्व एशियाई खेलों की दैनिक रिपोर्ट आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। लेकिन रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। अभी आप हमारे केंद्र से आज के सभा के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 4:45 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म जान तेरे नाम से। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने तथा गायक कलाकार है आश्रम भोसले और कुमार सानू।

के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया

संदेश संध्या के संगीत निर्देशन में तैयार, आइए सुनते हैं इरशाद कामिल की रचना। गायक है उस्ताद रशीद खान। फिल्म है जब वी मेट।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

0: नमस्ते, गोयनकास्ट की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुर्गा पूजा अपने स्टाइल को दीजिए एक नया फेस्टिव टच। गोयनकास्ट में आ गया है दुर्गा पूजा का न्यू कलेक्शन। लेडीज हो या जेंट्स, लेटेस्ट डिजाइन्स, ब्यूटीफुल कलर्स और स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट्स, तो देर किस बात की। इस दुर्गा पूजा शॉपिंग हो तो गोयनकास्ट से। गोयनकास्ट की तरफ से शुभ हो दुर्गा पूजा।
1: வணக்கம் அந்த மண் மக்களே, வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகவல் சொல்ல போறேன். குறிப்பா ஸ்ரீ விஜயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவங்களுக்கு இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக கண்டிப்பா இருக்கும்.

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान वाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, किसान वाणी के आज के इस अंक में सभी किसान साथियों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, हम अपने कार्यक्रम का आगाज हमेशा ही खूबसूरत विचार से करते हैं। हमारा आज का विचार है, मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता। और साथियों, मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने किसान साथियों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, नर्सरी में बुवाई के लिए कितने पुराने बीजू नारियल उत्तम होते हैं, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर सुने, नर्सरी में बुवाई के लिए कितने पुराने बीजू नारियल उत्तम होते हैं।

0: ये आपको बताना है। भाइयों प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और हमारे कार्यक्रम में बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों अब आइए कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर।
1: राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 2005 और 2006 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था। इसका मकसद है देश में बागवानी फसलों जैसे फल, सब्जी, फूल, मसाले और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कुछ मुख्य विशेषताएं भी है, नए बाग लगाना, किसानों को उन्नत किस्म के बीज और पौधे उपलब्ध कराना, किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण देना, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट बनवाने में मदद करना ताकि फसल खराब ना हो। सरकार द्वारा 40% से 100% तक सब्सिडी दी जाती है। जैविक बागवानी के लिए अलग से सहायता भी दिया जाता है। किसान साथियों इसका महत्व क्या है आइए जानते हैं। अनाज की तुलना में फल सब्जी से 3 से 4 गुना ज्यादा कमाई होती है। बागवानी में साल भर काम मिलता है जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलता है। देश में फसल और सब्जियों की उपलब्धता बढ़ती है। भारत के आम, केला, मसालों की विदेश में बहुत मांग है। इससे विदेशी मुद्रा आती है। यहाँ नारियल, सुपारी, ड्रैगन फ्रूट, मसालों की खेती के लिए यह मिशन बहुत फायदेमंद है। साथियों राष्ट्रीय बागवानी मिशन की कुछ विशेषताएं भी है। पहला है इसमें केवल फल, सब्जी, फूल, मसाले, काजू, कोको और औषधीय पौधे आते हैं, अनाज नहीं। दूसरा है जिस इलाके में जिस फसल की ज्यादा संभावना है उसी को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे नारियल, सुपारी, ड्रैगन फ्रूट। तीसरा है पौधा लगाने से लेकर ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस और फल को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस तक सब में मदद मिलती है। चौथा है छोटे किसानों को 40% से 100% तक सब्सिडी मिलती है। पांचवा है किसानों, मजदूरों को ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट करवाया जाता है। और छठा है जैविक बागवानी करने पर अलग से 10,000 रुपए प्रति हेक्टर की मदद की जाती है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है। साथियों ये सबसे जरूरी पॉइंट है फायदे और नुकसान। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों को फायदे किस प्रकार से होते हैं आइए जानते हैं। अनाज में 1 एकड़ से 30 से 40 हजार मिलता है। वहीं केले, पपीता, ड्रैगन फ्रूट से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई हो जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों को फायदे किस प्रकार से मिलते हैं आइए जानते हैं। कमाई दोगुनी होती है। अनाज में 1 एकड़ से 30 से 40 हजार मिलता है। वहीं केले, पपीता, ड्रैगन फ्रूट से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई हो जाती है। पौधे के लिए ड्रिप सिंचाई के लिए ग्रीन हाउस, कोल्ड स्टोरेज के लिए 40% से 50% तक सब्सिडी सरकार देती है। अनाज में 4 महीने काम, बागवानी में 12 महीने काम तो मजदूरी भी लगातार यानी साल भर रोजगार बना रहता है। ड्रिप से 70% पानी बचता है। कम पानी में ज्यादा फायदा होता है। कोल्ड स्टोरेज पैक हाउस बन जाने से फल सब्जी सड़ता नहीं, सही दाम मिलता है। इसमें फसल खराब नहीं होते। क्या इससे कोई नुकसान भी है? साथियों नुकसान नहीं कुछ चुनौतियां हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भले सब्सिडी है फिर भी शुरू में 1 एकड़ बाग लगाने में 40 से 50 हजार अपनी जेब से लगाना पड़ता है। शुरू में लागत ज्यादा होती है। धान 4 महीने में आता है लेकिन आम, नारियल में 3 से 4 साल बाद कमाई शुरू होती है। सब्र रखना पड़ता है। बिना ट्रेनिंग के करेंगे तो पौधा मर सकता है, इसलिए जानकारी के साथ साथ ट्रेनिंग लेना भी बहुत जरूरी है। अगर एक साथ सबने टमाटर लगा दिया तो दाम गिर जाता है, इसलिए पहले मार्केट देखकर मार्केट का ध्यान रखना चाहिए। बागवानी में कीट रोग जल्दी लगते हैं, इसलिए समय समय पर दवा और सफाई जरूरी है। तो साथियों अगर थोड़ा सब्र, थोड़ी समझदारी और थोड़ी मेहनत लगा दे तो बागवानी में नुकसान जैसा कुछ भी नहीं है, फायदा ही फायदा है।
0: भाइयों अभी आपने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में ये जानकारी हासिल की। साथियों अब आइए

0: साथियों, दूर दराज गांव में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो घरेलू बागवानी करती हैं, और घरेलू बागवानी करके वे अपने आंगन में हरियाली तो लाती ही हैं, साथ में जीवन में खुशहाली भी लेकर आती हैं। पिछले दिनों हमने सिपी घाट का दौरा किया, उस दौरान हमारी मुलाकात हुई श्रीमती शीला देवी के साथ, जो कि घरेलू बागवानी करती हैं, और क्या कुछ करती हैं इनकी जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: किसान साथियों, आज हमारे बीच सिप्पी घाट की रहने वाली श्रीमती शीला देवी जी मौजूद हैं। शीला देवी जी जहां एक कुशल गृहिणी है, उसी के साथ साथ ये बागवानी का शौक भी रखती हैं, और आज हम उनके घर में ही मौजूद हैं और देख रहे हैं घर के चारों ओर बेहद खूबसूरत सी नर्सरी है, और इसमें तरह तरह के प्लांट्स और पौधे जो है वो हमें नजर आ रहे हैं, जिनमें की बेहद खूबसूरत फूलों के पौधे, कुछ सजावटी पेड़ पौधे भी हैं, इसी के साथ साथ कुछ औषधि गुण रखने वाले पौधे भी हैं। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं कि ये किस तरह से नर्सरी तैयार करती हैं और बाजार तक पहुंचाती हैं। शीला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते
1: शीला जी, हम आपके घर में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बेहद खूबसूरत सी नर्सरी है, तो इसका देख रेख और मेंटेनेंस कौन करता है?
2: हम और हमारा हस्बैंड करता है। से हमको फूल पेड़ का थोड़ा शौक भी है
1: जी,
2: तो अभी आजकल थोड़ा सेल भी करते हैं।
1: हाँ, वो नजर आ रहा है आपका शौक जो है आपके खूबसूरत बगीचे में। हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर फूल जो है वो लगे हैं, तरह तरह के फूल लगे हैं, तो इन फूलों के लिए आप बीज वगैरह कहाँ से लेते हैं?
2: हम थोड़ा केरला से मंगाते हैं, आजकल वो पौधे का मंगाते हैं, उससे हम चारा भी बना देते हैं अपना।
1: अच्छा।
2: कटिंग करके अपना चारा भी बना देते।
1: अच्छा अच्छा, तो ये केरला से लाए हुए बीज है?
2: ज्यादा से ज्यादा केरला से।
1: सभी तरह के पौधे जो है वो केरला से लिए मंगा।

0: गए हैं। अच्छा, फूलों में बताइए कौन कौन से फूल हैं।
1: फूल बोले से जोरा है, पूरा 10-12 किस्म का है।
0: जी
1: गुलाब तो इतना नहीं, मेरा औषधि गुण का थोड़ा पेड़ है, शुगर का है। फिर अभी हम लोग थोड़ा लूज मोशन सब होने से उसके लिए देने का भी दवाई पत्ती है मेरे पास।
0: अच्छा, बात कर रहे थे फूलों के पेड़ों की। आपने बताया कि केरला से इनके बीज मंगाए जाते हैं और यहाँ पर जो है ये आप उगाते हैं, उसके बाद इसका चारा भी बना लेते हैं। चारा बनाने के बाद आप क्या बाजार में बेचते हैं, लोगों को देते हैं?
1: नहीं,
0: और
1: हम घरे में सेल करता है,
0: घर
1: घर
0: में
1: तो
0: ही से?
1: जाती है नहीं। इधर हम लोग बोर्ड लगा के रखा था, अभी केरला गए थे तो बोर्ड हटा दिया,
0: अच्छा,
1: अब घर में बोर्ड लगाता, आके घर से सेल हो जाता।
0: हाँ, मतलब आप सेल करने का
1: सेल
0: काम भी करते
1: करते
0: हैं।
1: हैं।
0: अच्छा, बीज के अलावा क्या आप पौध भी सेल
1: मैं
0: करती
1: पौध
0: हैं?
1: भी सेल करता हूँ,
0: छोटे पौध जो होते हैं तो लोग ले जाते हैं?
1: ले जाते।
0: ले जाते हैं। अच्छा, आपने अपने घर में ये भी बताया, देखिए फूलों का तो जहां तक यूज का सवाल है तो उसकी तो हम नहीं कह सकते, फूल तो आजकल हर जगह जो है यूज हो रहे हैं, डेकोरेशन का हो, पूजा पाठ का कहीं बात हो, तो हर जगह फूल लगते हैं। आपके घर से क्या लोग फूल भी लेके जाते हैं?
1: फूल लेके जाते, पूजा के लिए फूल लेके जाता है।
0: वो भी आप बिक्री करते हैं?
1: नहीं, वो पूजा के लिए ऐसे दे देता है, पैसा नहीं लेते उसका।
0: अच्छा,
1: फिर
0: सिर्फ
1: आम
0: पौध के पैसे लेते हैं
1: पौध
0: आप
1: का पैसा लेते
0: और बीज का, है ना? हम देख रहे हैं कि कुछ डेकोरेशन प्लांट है जिन्हें हम इको फ्रेंडली प्लांट कहते हैं और इनकी आज बाजार में बहुत कीमत है।
1: हैं।
0: हाँ, सभी जगह ये प्लांट्स जो है रखे जाते हैं और आपके बगीचे में भी बहुत सारे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि ये प्लांट जो है इनको उगाने में आपको बहुत मेहनत लगती होगी,
1: मेहनत लगता
0: तो
1: है
0: इसका चारा बीज जो है वो भी क्या आप केरला से ही मंगाते हैं या लोकल मिलता है?
1: नहीं, हम तो केरला से ज्यादा मंगाते हैं, चारा ही लेके आता है। चारा लेके आता है, उसी का कटिंग कर देता है।
0: उसी की कटिंग से मतलब ड्राफ्टिंग करके आप यहाँ पे लगा देती हैं। देखिए आपकी नर्सरी में बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो किए हुए हैं, बहुत बढ़िया तरह से फले फूले हैं, तो हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि इनके लिए कोई आप खाद यूज करते हैं ताकि ये जिनकी बढ़वार जो है वो जल्दी हो जाए, कौन सी खाद डालती है,
1: यूज करते हैं, गोबर खाद हम लोग अपना घर में कंपोस्ट बनाता है। घर में
0: किस तरह से बनाते हैं आप?
1: पत्ती सब, हरा पत्ती सब डाल के गोबर में
0: हाँ,
1: बनाता है, उसी को डालता है, ज्यादा से ज्यादा वही डालता है।
0: उसी खाद से ये इतने मतलब अच्छे हो गए हैं। अच्छा, तो इसके अलावा कुछ है कि मेडिसिन वैल्यू जिन प्लांट्स की होती है यानी औषधि गुण रखते हैं वो वाले प्लांट्स भी हैं, वो कौन कौन से प्लांट है आपके पास?
1: मुकुटी बोल के है, शुगर के लिए अच्छा है, मुकुटी
0: मुकुटी प्लांट? अच्छा,
1: प्लांट।
0: हाँ,
1: और तुम्बा बोल के है,
0: अच्छा
1: शिवेली भी बोलता है उसको, वो
0: अच्छा
1: हम लोगों पेट दर्द ऐसे लूज मोशन सब होने से उसका पत्ती भी यूज होता है।
0: अच्छा अच्छा
1: उसका चेस्ट पेन होने से भी, थोड़ा हल्का चेस्ट पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम
0: हाँ
1: होता है
0: हाँ
1: उसके लिए भी उसका रस निकाल के पीने से भी वो आराम हो जाता है।
0: तो ये प्लांट के बारे में आपके आसपास जो बस्ती है यहाँ लोगों को पता है कि ये प्लांट यहाँ पर उग रहे हैं?
1: पता है, आदमी आके लेके भी जाता है, किसी को वन टन से हम देता भी
0: आप देते भी हैं?
1: देते।
0: आप फ्री में देते हैं या उनसे कुछ चार्ज करते हैं?
1: नहीं, दवाई के लिए चार्ज नहीं दिया अभी तक।
0: अच्छा,
1: नहीं
0: आप इनपे कभी कोई रासायनिक दवा तो नहीं
1: नहीं
0: डालते?
1: बागाने में अपना लहसुन हल्दी ये सब यूज होता है,
0: अपनी बनाई हुई जैविक खाद
1: बनाई
0: ही आप यूज करते
1: लहसुन।
0: हैं और बाकी कोई बाजार से नहीं खरीदी जाती है? अच्छा, तो आप इस बागवानी को और बढ़ाना चाहेंगी क्योंकि आपके बगीचे में जो पेड़ है ना वो बहुत अनमोल है, क्योंकि ये पेड़ जो है ये यहाँ पर देखने को भी मिलते नहीं है और इनकी बाजार में कीमत भी बहुत ज्यादा है ना? तो आप इस बागवानी को बढ़ाकर ये आपके लिए एक आय का अच्छा स्रोत जो है वो बन सकता है, तो आप क्या चाहेंगी?
1: बढ़ाई करने के लिए चाहता है।
0: बढ़ाने के लिए चाहते हैं ना, तो आपके पास जगह भी बहुत ज्यादा है और आप बढ़ाइए उसका ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हुई जुड़िए और लोग आएंगे और प्लांट लेके जाएंगे और इस तरह से आपका काम जो है ये और ज्यादा बढ़ सकता है और आपके लिए आय का सृजन भी कर सकता है। शीला जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमारे साथ इतनी बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: घरेलू बागवानी करने वाली महिला श्रीमती शीला देवी, जो कि अपने आंगन में हरियाली तो करती ही हैं, साथ ही साथ जीवन में उन्होंने खुशहाली भी लाई है, इन्हीं कामों को अंजाम दे रही हैं और वे बेहद इन कामों से खुश भी नज़र आती थी। साथियों, हमारी और भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो इन कामों से जुड़ सकती हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकती है। साथियों, इस बात को यहीं विराम देते हैं और अब हम चलते हैं मौसम की तरफ। हमारे किसान साथियों को मौसम संबंधी जानकारी का होना बेहद जरूरी है, आइए ले लेते हैं मौसम पर आधारित कृषि परामर्श। किसान भाइयों, मौसम संबंधी अनुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है जो अगले 48 घंटों में और गहरा हो सकता है। इसके प्रभाव

0: से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसान भाइयों, अगले कुछ दिनों के दौरान हमारे इस द्वीप समूह में भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर सहित पूर्वी तटीय इलाकों में लगातार भारी गरज चमक के साथ बारिश होने की आशंका भी जताई गई है। साथियों, इस मौसम में कृषि कार्यों पर जो काम किए जा सकते हैं, कुछ जरूरी सलाह आपको दी गई है, आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों, फसलों की कटाई, भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, इसलिए यदि खरीफ फसलें जैसे शुरुआती धान, मक्का पक चुके हैं तो तुरंत कटाई कर लें और सुरक्षित स्थान पर रख दें। साथियों, भारी बारिश से खेतों में जलभराव हो सकता है। धान, सोयाबीन, कपास और सब्जी के खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध रखें ताकि फसलें गल न जाएं। सिंचाई और खाद के बारे में ये बताया गया है कि अचानक तेज बारिश की संभावना है, इसलिए अगले 3-4 दिनों तक फसलों में किसी भी प्रकार का रासायनिक छिड़काव या यूरिया खाद डालने का काम रोक दें। कीटनाशक छिड़काव के बारे में भी यही सलाह दी जाती है कि उमस और नमी से कीटों का खतरा है। हवा में नमी बढ़ने से फसलों में कीट और बीमारियां बढ़ सकती है। मौसम साफ होने पर ही कीटनाशक का प्रयोग करें। किसान साथियों, विशेष सावधानी के तौर पर बताया जाता है कि तेज आंधी की चेतावनी को देखते हुए बारिश के समय किसान भाई खेतों में काम करने से बचें और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण ना लें। किसान साथियों, मौसम साफ होने पर ही खेतों में और समुद्र में जाएं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का भी भरपूर ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, अभी आपने मौसम पर आधारित ये जानकारी हासिल की। साथियों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: अच्छा तो हम चलते हैं,
1: अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं।
2: किसान साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, नर्सरी में बुवाई के लिए कितने पुराने बीजू नारियल उत्तम होते हैं। उम्मीद करते हैं किसान साथियों ने प्रश्न के उत्तर सोच लिए होंगे। भाइयों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, नर्सरी में बुवाई के लिए कम से कम 12 महीने पुराने बीजू नारियल छांटने चाहिए। उम्मीद करते हैं हमारे किसान साथियों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
2: अभी हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सेवा संकल्प अभियान के तहत स्टार्टअप इंडिया।
3: नमस्कार, सेवा संकल्प अभियान की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया की। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, संस्कृतियाँ और प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र, जंगलों और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ये द्वीप समूह भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ विकास की अनेक संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन भौगोलिक दूरी और परिवहन जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं। ऐसे में स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल द्वीप समूह के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर सकती है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में उद्यमिता, नवाचार और नए व्यवसायों को बढ़ावा देना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को नए विचारों के साथ व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। आज के समय में युवा केवल नौकरी पाने की इच्छा रखने के बजाय स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इसी सोच को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के युवाओं में भी बढ़ावा दिया जा सकता है। द्वीप समूह में स्टार्टअप के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। देश विदेश से अनेक पर्यटक अंडमान और निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखने आते हैं। पर्यटन से संबंधित नए स्टार्टअप स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।

पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक स्थानों, समुद्री गतिविधियों और प्राकृतिक स्थलों की जानकारी देने के लिए डिजिटल मंच बनाए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा संचालित होमस्टे, पर्यटन मार्गदर्शन, परिवहन और अन्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा सकता है। द्वीप समूह के विकास में स्थानीय उत्पादों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यहाँ नारियल, मछली, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों से जुड़े व्यवसाय विकसित किए जा सकते हैं। स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। ई कॉमर्स और डिजिटल विपणन के माध्यम से इन उत्पादों को देश के अन्य भागों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ सकती है और उनके उत्पादों को नई पहचान मिल सकती है। मत्स्य पालन भी द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके नए व्यवसाय विकसित किए जा सकते हैं। मछुआरों को बाजार से जोड़ने के लिए डिजिटल मंच बनाए जा सकते हैं। मछली के भंडारण, पैकेजिंग और परिवहन की बेहतर व्यवस्था के लिए भी नए समाधान विकसित किए जा सकते हैं। इससे उत्पादों की बर्बादी कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैविक खेती, आधुनिक सिंचाई, कृषि उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में नए प्रयोग किए जा सकते हैं। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई तकनीक विकसित करके किसानों की सहायता की जा सकती है। इससे कृषि को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाया जा सकता है। द्वीप समूह के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के समुद्र, जंगल और जैव विविधता इसकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदाओं में शामिल है। इसलिए विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा करना भी आवश्यक है। स्टार्टअप कचरा प्रबंधन, पुनर्चक्रण, प्लास्टिक के विकल्प, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों से जुड़े व्यवसाय भी विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी की जा सकती है। कचरा प्रबंधन द्वीप समूह के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। पर्यटन बढ़ने के साथ कचरे की मात्रा भी बढ़ सकती है। ऐसे में कचरे को अलग करने, पुनर्चक्रण और जैविक कचरे से खाद बनाने जैसी गतिविधियों के लिए नए स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इससे स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्टार्टअप नए अवसर पैदा कर सकते हैं। द्वीपों के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है। तकनीक की सहायता से विद्यार्थी देश के अलग अलग हिस्सों के शिक्षकों और विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों को नए विचार विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। दूरस्थ द्वीपों में रहने वाले लोगों तक आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएं इस दिशा में उपयोगी हो सकती हैं। इस प्रकार तकनीक आधारित स्टार्टअप लोगों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने में योगदान दे सकते हैं। स्टार्टअप के विकास के लिए अच्छी इंटरनेट सुविधा भी आवश्यक है। तेज और विश्वसनीय डिजिटल कनेक्टिविटी से ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल भुगतान, शिक्षा और अन्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। छोटे स्थानीय व्यवसाय भी डिजिटल माध्यमों से अपने ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे। इससे द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिलेगी। युवाओं की भूमिका इस पूरे विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार के युवा अपनी स्थानीय समस्याओं और आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे ऐसे नए विचार प्रस्तुत कर सकते हैं जो द्वीप समूह के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो। सरकार, विद्यालय, महाविद्यालय और निजी संस्थाएं मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। इनक्यूबेशन केंद्रों के

माध्यम से युवाओं को अपने विचारों को व्यवसाय में बदलने का अवसर दिया जा सकता है। महिलाओं को भी स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों के क्षेत्र में महिलाएं नए व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने की सुविधा मिलने पर वे अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से द्वीप समूह के युवाओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना विकसित की जा सकती है। स्टार्टअप केवल रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि वे स्थानीय समस्याओं के नए समाधान भी प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नए समाधान विकसित किए जा सकते हैं। हालांकि स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। पूंजी की उपलब्धता, तकनीकी प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और इंटरनेट जैसी सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं। सरकार और वित्तीय संस्थानों को योग्य उद्यमियों को आवश्यक सहायता देनी चाहिए, साथ ही युवाओं को व्यवसाय की योजना, वित्तीय प्रबंधन और बाजार की आवश्यकताओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। द्वीप समूह के विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। किसी भी विकास कार्य में स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण का सम्मान किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ मिले। सतत विकास की यही भावना स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाई जा सकती है। अंततः कहा जा सकता है कि स्टार्टअप इंडिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए एक उपयोगी अवसर है। इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिल सकते हैं। पर्यटन, कृषि, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में नए व्यवसाय विकसित किए जा सकते हैं। यदि सरकार, स्थानीय प्रशासन, शिक्षण संस्थान, उद्योग और युवा मिलकर प्रयास करें तो द्वीप समूह की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिल सकती है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करते हुए आधुनिक तकनीक और नवाचार को अपनाना आवश्यक है। भारत एक महान देश है जिसकी पहचान उसकी विविधता, संस्कृति, परंपराओं और प्रतिभाशाली नागरिकों से होती है। हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और यही युवा भारत के भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। आज भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में देश लगातार नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। ऐसे समय में युवाओं के लिए नए विचारों, रचनात्मक सोच और उद्यमिता को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया की पहल शुरू की। स्टार्टअप इंडिया केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि ये देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ 16 जनवरी 2016 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना तथा नए व्यवसायों को विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। स्टार्टअप ऐसे नए व्यवसाय होते हैं जो किसी नए विचार, तकनीक या समस्या के समाधान पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं, बल्कि समाज की आवश्यकताओं को समझकर उपयोगी सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना भी हो सकता है। स्टार्टअप के माध्यम से युवा नौकरी तलाशने वाले व्यक्ति बनने के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं। इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक विकास को गति

0: मिलती है। इस प्रकार स्टार्टअप इंडिया न केवल युवाओं के सपने को पूरा करने का माध्यम बन सकता है, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि स्टार्टअप इंडिया भारत के युवाओं को नए विचारों और उद्यमिता के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। ये रोजगार सृजन, नवाचार और आर्थिक विकास की दिशा में योगदान दे सकती है। द्वीप समूह जैसे विशेष क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप के नए अवसर विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए युवाओं की मेहनत, सरकार का सहयोग, शिक्षा का विस्तार और आधुनिक तकनीक का सही उपयोग आवश्यक है। हमें ऐसा भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए जहां हर प्रतिभाशाली युवा को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिले और प्रत्येक क्षेत्र का विकास पर्यावरण तथा समाज के हितों के साथ हो। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, सशक्त युवा और समृद्ध द्वीप समूह के निर्माण में हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं। यही सेवा, संकल्प और राष्ट्र निर्माण की सच्ची भावना है।
1: अभी आप

अभी आप क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत सेवा संकल्प अभियान सागरमाला के तहत स्टार्टअप इंडिया विषय पर जानकारी सुन रहे थे।

यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म कहो ना प्यार से, कहो ना प्यार है से। सावन कुमार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। गायक कलाकार है आशा भोसले और साथी।

अंत में सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ों में फिल्म कुछ ना कहो का ये गाना। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉ ने।

श्रोताओं, अभी आप कुछ फिल्मी गीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 MHz पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब हम आपको आज के इस सभा के कुछ कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं आप सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा 7:20। 7:30 पर युवाणी में आप सुनेंगे पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। रात 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। रोजगार समाचार व गौरव गान का समय रहेगा 8:30। रात 10:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत। ये तो थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी 5:25 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात प्रभाती वंदना आप सुनेंगे। 5:55 में जानेंगे बकरी पालन से लाभ विषय पर जानकारी 5:55 पर। 6:10 पर

चलियानों की यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा जीत शीर्षक पर 6:15 पर। 6:30 पर रामचरितमानस गान आप सुनेंगे। गांधी चर्चा का समय रहेगा 6:40। 6:50 पर मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सुबह 7:00 आप सुन पाएंगे जन सूचनाएं। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देश और रागनी आप सुनेंगे 7:15 पर। इसी समय विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान में कानून की बात कार्यक्रम में आप साइबर अपराध पर एडवोकेट वर्षा दास के साथ ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे और कुछ फिल्मी गीत सुनवाया जाएगा। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में गायिका होंगी रानू मुखर्जी। कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे सुबह 9:00। 9:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश सुसोल्जर की रिकॉर्डिंग सुनवाई जाएगी सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये तो थे कल सुबह में प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित, 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। वाइपर द्वीप के एकीकृत प्रबंधन योजना पर 30 सितंबर को होगी जनसुनवाई, आम लोगों और हितधारकों से मांगे गए सुझाव। विश्व पर्यटन दिवस पर द्वीप समूह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी और व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने की पहल। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की तकनीकों को जाना। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर, एनबी 6 वर्षीय पाठ्यक्रम और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड के अनुसार कुल 2,65,960 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में

परीक्षा दी थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चर डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। वाइपर द्वीप के लिए तैयार की जा रही एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के प्रारूप पर 30 सितंबर को जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। यह जन सुनवाई सुबह 11 बजे दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। पर्यावरण एवं वन विभाग ने EIA अधिसूचना 2006 के तहत यह जन सुनवाई आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रारूप IIMP के साथ कोस्टल लैंड यूज मैप और जियोमोर्फोलॉजी मैप की प्रतियां अंडमान एवं निकोबार प्रशासन और पर्यावरण एवं वन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जन सुनवाई में आम नागरिक और संबंधित हितधारक वाइपर द्वीप की प्रस्तावित प्रबंधन योजना के संबंध में अपनी राय और सुझाव रख सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है पर्यटन दिवस और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की ओर से 27 सितंबर को डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म विषय पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीप समूह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बर्ड टूरिज्म कार्यशाला, पर्यटन वीडियो प्रतियोगिता, कार्विन कोप बीच पर बीच वॉलीबॉल और रस्साकसी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा 27 सितंबर को हवाई अड्डे, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सेल्युलर जेल पहुंचने वाले पर्यटकों का पारंपरिक स्वागत किया जाएगा तथा सेल्युलर जेल, चाथम सॉमिल, समुद्रिका नवल मरीन म्यूजियम, मानव विज्ञान संग्रहालय और मत्स्य संग्रहालय जैसे चुनिंदा संग्रहालयों में पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। पर्यटन विभाग ने सभी नागरिकों, पर्यटकों और युवाओं से इस उत्सव में शामिल होकर द्वीप के पर्यटन को एक नई दिशा देने की अपील की है। व्यावसायिक शिक्षा के मास्टर ट्रेनर्स के लिए व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत द्वीप समूह के 60 शिक्षकों ने कल केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा किया, जहां उन्हें पशु विज्ञान और बागवानी से जुड़े विभिन्न वैज्ञानिक तौर तरीकों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। आज श्री विजयपुरम के निल के 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं के 70 विद्यार्थियों ने भी संस्थान का दौरा करके कृषि, जैव विविधता और मत्स्य पालन की कार्य प्रणाली को समझा। इस पूरे शैक्षणिक दौरे का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को कृषि, बागवानी, पशुपालन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना था, ताकि वे अपनी पढ़ाई और शिक्षण कार्य में इसका बेहतर उपयोग कर सके। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में आज राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया। मध्य अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एस कृष्णा चैतन्य ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि ने छात्रों और शिक्षकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और युवा समाज को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने पर जोर दिया। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्यिकी विज्ञान संभाग द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग और आत्मा के सहयोग से फिनफिश और शेलफिश रोग निदान तथा प्रबंधन पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 22 से 25 सितंबर तक किया जा रहा है। NSPAAD दूसरे चरण के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में 14 पुरुष किसानों सहित कुल 19 मत्स्य पालकों ने हिस्सा लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मछली और झींगा प्रजातियों में होने वाली बीमारियों की समय पर पहचान, रोग

रोकथाम और उनके प्रबंधन की व्यवहारिक जानकारी देना था। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. जय सुंदर और कोर्स डायरेक्टर डॉ. जे प्रवीण राज ने महत्वपूर्ण विचार रखे। विद्युत विभाग के अनुसार आगामी 26 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के कई प्रमुख इलाकों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। इसमें विद्युत भवन, सचिवालय, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, राजनिवास, गांधी पार्क, शादीपुर, साउथ पॉइंट, मजार पहाड़, मच्छी लाइन, आरजीटी रोड, गवर्नमेंट प्रेस और जेएनआरएम कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल है। इसके अलावा गुरुद्वारा लेन का कुछ हिस्सा, बंगाली क्लब, बिग्गी लाइन, मानव विज्ञान संग्रहालय, मिडिल पॉइंट, लिंक रोड, वीआईपी रोड, पुलिस लाइन, जंगलीघाट का कुछ हिस्सा, डेयरी फार्म जंक्शन, सीपीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स, लंबा लाइन, रांची टेकरी, स्कूल लाइन और मिनी बे का कुछ हिस्सा, राजस्थान मंदिर, ALWH कॉलोनी, हवाघर जंक्शन, दूध लाइन, नया गांव, बरगद लाइन, GPRA कॉलोनी और कार्बिन जंक्शन भी इस कटौती से प्रभावित रहेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के होटल प्रबंधन विभाग की ओर से पहाड़गांव स्थित परिसर में पहली अंतर विद्यालय और महाविद्यालय शेफ प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस 2 दिवसीय पाक कला प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य द्वीप के युवाओं और छात्रों को अपनी रचनात्मकता और कौशल दिखाने का अवसर देना था। दक्षिण अंडमान की उपायुक्त पल्लवी सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और संस्थान की प्राध्यापक डॉ. सन्मुख कौर ने छात्रों में कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर के अनुसार पौंडिचेरी विश्वविद्यालय की CBCS और NEP स्नातक कला, वाणिज्य और विज्ञान की नवंबर-दिसंबर 2026 की परीक्षाएं 16 नवंबर से आयोजित की जाएगी। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच प्रवेश पाने वाले और जिन विद्यार्थियों ने कोई परीक्षा बाकी है वे अपने परीक्षा फॉर्म 29 सितंबर तक प्रवेश एवं परीक्षा विंग में जमा करा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट PG 2026 का परिणाम घोषित, 2.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा। पाइपर द्वीप की एकीकृत प्रबंधन योजना पर 30 सितंबर को होगी जनसुनवाई, आम लोगों और हितधारकों से मांगे गए सुझाव। विश्व पर्यटन दिवस पर द्वीप समूह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी और व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहारिक अनुभव से जोड़ने की पहल। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की तकनीकों को जाना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटों पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। जहाज अन्य सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलयानों के यात्रा कार्यक्रम। एमवी जॉलीबॉय कल सुबह 7 मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्रीविजयपुरम से चलेगा। जलयान 26 तारीख को सुबह 7 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा। डिडी अंडमान जाने के लिए एमवी कैमल में 25 तारीख को रात 9 श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 26 तारीख को रात 9 लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर 26 तारीख को सुबह 7 श्रीविजयपुरम से रवाना होगा। जलयान की वापसी 27 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। जलयान नालंदा नैनकोरी होते हुए कैमल में जाने के लिए 29 तारीख को सुबह 9 श्रीविजयपुरम से जाएगा और 1 अक्टूबर को सुबह 8 कैमल में से छूटकर नैनकोरी होते

श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बू का कल सुबह 6 बजे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस पहुंचेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी रानीचंगा स्वराजदीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल ही सुबह 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी स्टेट आइलैंड कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप जाएगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी रंगत कल दिन में 11:30 पर स्वराजदीप के लिए श्री विजयपुरम से चलेगा और कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप जाएगा और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एम वी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से चलेगा। जलयान उसी दिन शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम पहुँचेगा। एम वी रानी लक्ष्मी कल शाम 5 बजे स्वराजदीप से के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान 26 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराजदीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम आएगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं, इसके अंतर्गत सुनिए एक आवश्यक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ ही जन सूचनाएँ समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:20 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। श्रोताओं पहले सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में समीर की गीत रचना। संगीत नदीम श्रवण का है तथा फिल्म का नाम है राज।

लीजिए अब सुनिए फिल्म रेड का ये गीत। गीत रचना समीर का, गायक व संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, समय जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। पैसा खो जाने पर दोबारा कमाया जा सकता है। रिश्तों में आई दूरी को कभी कभी बातचीत से कम किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। इसलिए जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने के बजाय उन पलों को महत्व देना चाहिए जो हमारे पास आज मौजूद है। हर सुबह

बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें हिंदी साहित्य और अध्ययन में गहरी रुचि थी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी शिक्षा जारी रखी और आगे चलकर हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों में अपना स्थान बनाया। दोस्तों, दिनकर जी की भाषा प्रभावशाली और सरल थी। उनकी कविताओं में वीरता और आत्म

दोस्तों, भारतीय संगीत की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल को छू जाती है। ऐसी ही महान और मधुर आवाज़ थी स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। अपनी सुरीली आवाज़, भावपूर्ण गायकी और अद्भुत संगीत साधना से उन्होंने हिंदी सिनेमा के गीतों को एक नई ऊंचाई दी। दशकों तक उनकी आवाज़ ने प्रेम, खुशी, भक्ति और देश प्रेम जैसे

0: अनगिनत भावों को अपनी मिठास दी। उनकी आवाज़ की सादगी और गहराई ने उन्हें संगीत प्रेमियों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया। आइए भारतीय संगीत जगत की इस महान गायिका की सुरमई यात्रा और उनके अद्भुत योगदान को याद करें।
1: भारतीय संगीत के इतिहास में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज़ थी लता मंगेशकर।

0: कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती, बल्कि सीधे दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज़ थी लता मंगेशकर। अपनी मधुर, सुरीली और भावपूर्ण आवाज़ के कारण वे देश विदेश में स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को न केवल समृद्ध किया, बल्कि उसे विश्व स्तर पर एक अलग पहचान भी दिलाई। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। घर में संगीत का वातावरण होने के कारण लता जी का बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। लता जी का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं और उन्हें अपने संगीत के माध्यम से परिवार का सहारा बनना पड़ा। शुरुआती दौर में उन्हें कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत, अनुशासन और निरंतर साधना के बल पर उन्होंने धीरे धीरे फिल्म संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। लता मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कई अन्य भारतीय भाषाओं में गीत गाए। उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता थी भावों की सच्चाई और आवाज़ की मिठास। चाहे प्रेम की कोमल भावना हो, विरह की पीड़ा, भक्ति की शांति, मातृत्व का स्नेह या देशभक्ति का उत्साह, उन्होंने हर भावना को अपनी आवाज़ में बेहद खूबसूरती से व्यक्त किया। उनकी आवाज़ में गाया गया ऐ मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक ऐसा गीत है जिसे आज भी सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। इसके अलावा भारतीय सिनेमा के अनेक सदाबहार गीतों में उनकी आवाज़ ने भावनाओं को एक नई ऊंचाई दी। उनकी आवाज़ कई दशकों तक हिंदी सिनेमा की नायिकाओं की पहचान बनी रही। लता जी की उपलब्धियां भी उतनी ही गौरवपूर्ण हैं। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने लंबे संगीत सफ़र में अनगिनत गीतों को अपनी आवाज़ देकर भारतीय संगीत की अमूल्य विरासत को समृद्ध किया। लता मंगेशकर का व्यक्तित्व केवल एक महान गायिका तक सीमित नहीं था। वे संगीत के प्रति समर्पण, अनुशासन और निरंतर सीखते रहने की प्रेरणा भी थीं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रतिभा को सफलता में बदलने के लिए मेहनत और साधना का होना उतना ही आवश्यक है। 6 फरवरी 2022 लता मंगेशकर का निधन हुआ। उनके जाने से भारतीय संगीत जगत ने अपनी एक अनमोल आवाज खो दी, लेकिन महान कलाकारों का जीवन केवल उनके जीवन काल तक सीमित नहीं रहता। उनकी कला और उनकी आवाज़ आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी। आज भी जब लता जी की कोई गीत रेडियो पर बजती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। उनकी आवाज़ में बीते हुए दौर की यादें भी हैं और आने वाले समय के लिए प्रेरणा भी। लता मंगेशकर केवल भारत की महान गायिका नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की एक ऐसी अमर धरोहर थी जिनका स्वर सदियों तक हमारे दिलों में गूंजता रहेगा।
1: तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माय वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।
0: तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम।

अभी हमारे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की गाए फिल्म साहिबान के एक गीत के साथ। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में सुनते हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है तथा फिल्म है शेषनाग।

श्रोताओं, अब एक सूचना। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक ना हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट की ये चयन प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी के संगीत निर्देशन में तैयार समीर की गीत रचना। फिल्म है रखवाला, गायक कलाकार है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं मंगल सिंह का गाया फिल्म मैना का ये गीत। पयाम सईदी के बोल को सुरों में पिरोया है नरेश शर्मा ने।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति यानी डिप्यूटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग में समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित

सेवा पूरी कर चुके हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्ररूप में अपने आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्र सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम प्रॉपर चैनल से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफरदरगंज एनक्लो नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किए हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग वेबसाइट भेजना, इसे पुनः सुनिए, प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। लीजिए अब सुनिए संवेद स्वरों में गौरव गान।

अभी आप संवेद स्वरों में गौरव गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इसमें रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिक

0: को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के

0: जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
1: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
1: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
5: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think

0: not only to think, to question, not only to question, to understand, and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
1: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
2: With the changing character of war.
1: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
6: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
1: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
7: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
8: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग यही था कि मैं इस बार भी गोल लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
7: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्केट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम

0: या भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
3: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
2: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
3: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
2: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे।

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, आभार, अभिनंदन महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: महोदय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
3: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
2: जी,
3: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल दिखना पड़ता है, और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में, अंधड़ तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि, या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसको नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है, और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है।
2: जी,
3: ये एक हम बोलते हैं कैप बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहली बात तो यह कि जो भी सिग्नल का वो है, वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसकी सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है, एस्पेक्ट है, तो उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसने देख लिया कि मेरा लाल है, लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं लगाया, या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की को फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है, और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है, और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है, और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
2: कवच 4.0 में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
3: इसमें कवच जो 4.0 है ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए, ये आपको बताएं, ये बहुत ही सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है, और इसमें एक SIL 4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL 4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, जो एक उससे दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को और के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका

0: एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
1: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
0: आपसे मैंने बताया कि वो
1: जी
0: सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है, आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है। आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी, ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है
1: जी
0: उसका एक आईपी होता है, जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास हैं।
1: जी
0: तो नॉर्मली जो ईटी जो एक यूरोपियन प्रणाली थी उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश हैं उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो
1: जी
0: ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की प्रणाली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें एआई से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा
1: जी
0: जनरेट करेगा ये
1: जी
0: सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा। तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक एआई एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस में जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है, और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है
1: जी
0: इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है, और हमारी जो देश की जो एक इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
1: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूं तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
0: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं, वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का आवागमन का, उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको, जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपेरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपेरिजन में, एयरलाइंस के कंपेरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए, आज ज्यादा ट्रेनें चला पाए,
1: जी
0: उसका फायदा आम जनता को मिलता है क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती हैं 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है, लेकिन एक बार कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद,
1: जी
0: उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ, ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा,
1: जी
0: सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आरामदायक तरीके से पहुंचेगा।
1: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
0: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जिसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है, जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री इस गाड़ियां में जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था, तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी

0: है और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
1: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है। जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री इस गाड़ियां में जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था। तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका वो उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी वो जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है।
0: जी
1: और जैसे मैंने बताया कि जो मालगाड़ियां हैं उस पर हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है। अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा, और
0: जी
1: हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें हमको ज्यादा हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे। तो उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कवच से संभव होगा। और एक जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली सबसे बड़ा खूबी ये है कि हमारी स्वदेशी है और
0: जी
1: इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है। और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारा खुद का है और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से, और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे?
1: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है। उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं जो डब्बे कोचेज उसकी क्वालिटी, और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
0: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
1: देखिए मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है
0: जी
1: ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है दो ऑप्टिक फाइबर केबल, उस चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ही हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं। और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। और ये हमारा कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटेना रहता है। और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं। तो इसके लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो हम आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं
0: जी
1: उसके ऊपर निर्भर नहीं है। ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर होगा।
0: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
1: चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसमें चार दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा आता है, 1 किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है, एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें भी 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां ये क्योंकि SIL 4 जो होता है सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती हैं। और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती हैं वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही हैं कि
0: जी
1: ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सकें। और एक बार और उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे RDSO द्वारा दिया जाता है, और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती हैं और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी।
0: महोदय,

0: रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0 किस तरीके से उसमें अपनी भागीदारी देता हुआ नजर आ रहा है?
1: कवच जो 4.0 है, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है और इसके साथ जो एक इकोसिस्टम बनेगा टेक्नोलॉजी का, जो कंपनियां इसको डेवलप कर पाएंगी, वो न सिर्फ कवच में अन्य जुड़े, जैसे हमारी आगे चल के प्लानिंग है कि हमारा फ्रेट का सिस्टम है, फ्वाइस बोलते हैं उसको, FOIS, ऐसी कोचिंग ट्रेन का COIS, क्वाइस है, तो ऐसे हमारे कई इसके अलावा पैरेलल में नेटवर्किंग चल रही है, तो हमारी ये 4.0 और उसके आगे के जो लेवल्स आएंगे तो उसमें एक तो सुरक्षा तो मिलेगी मिलेगी और उससे जो डाटा जनरेट होगा, अगर हम कोशिश रहेगी कि उसको हम अपने वॉइस प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। Countrywide.

0: Rightly explained, to tell to our listeners, he used three words: the Kaveri, the GE-404 and the GE-414. These are names of engines. The Kaveri is an engine which we are developing. The GE-404 and the GE-414 are engines being purchased from General Electric of US. Group Captain Narang, you have provided a very good overview of how the Indian Air Force is progressing in terms of new weapons, new planes, and how these impact the battlefield of the future. Thank you for speaking to us.
1: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on India's journey towards defense Atmanirbharta. The participants were Group Captain Dr. R.K. Narang, Defense Analyst, and Ajay Banerjee, Senior Journalist. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also...
3: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
4: भारतीय एथलीट्स दिखाने लगे रंग एक के बाद एक मेडल और अब एथलेटिक्स में गोल्ड का इंतजार इंडियन एथलेटिक्स का मेडल अकाउंट अब खुल चुका है और ट्रैक एंड फील्ड से लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज दोनों मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं अब इंतजार है उस सुनहरे पल का पर गोल्ड के साथ भारतीय तिरंगा सबसे ऊपर लहराए शुरुआत करते हैं मिक्स्ड 4x400m रिले से जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया पूर्व महाराजू विशाल थेनारसु विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला महिलाओं की 10,000m रेस सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है साथ ही महिलाओं की 10,000m में ये 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था 12 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे तीसरे स्थान पर बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया अपने 6th और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59m की जंप लगाई और 4th पोजीशन पर कॉम्पिटिशन खत्म किया यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो पोजीशन पर रहें अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की अनामिका ने 100m बाधा दौड़ 14.02 में 8 पॉइंट्स हाई जंप में 1.74m की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स शॉर्ट पुट में 11.15m के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200m दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए इन चारों इवेंट

0: को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3,177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे सातवें स्थान पर रहे। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3,159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुरक्षित है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 500 के साथ स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pomar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jaakar Khan finished fifth in the men's sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur. Inanto, Tendeliti Harjam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Barbina Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's 60 kilogram category after a hard-fought battle against China's Zhao Zhang. Roshibena gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Roshibena Devi has become a three-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
2: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा लेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला

0: वाला खेले बगैर जीत गई। कजाक मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना पाकिस्तान की नबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके खेलने में चोट लग गई, इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वाकओवर के द्वारा अगले दौर यानी फाइनल में जगह मिल गई।
1: They were successful in India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favour of India's Veer Chautrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 8-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuang Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuang Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
1: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर स्टेज का समापन किया, यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
1: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chittipaddi securing a straightforward 3-0 win with a scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-4 for bowler Erdine Bartmuk and Sanja. In men's single round 1, paddler Manu Shah started his campaign over Malaysia's Wong Kui Shin. Manu prevailed over Wong with a scoreline that read 11-9, 12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the defense. Prerna Sharma has the details.
3: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता है। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त

0: हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत साइबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हायंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
2: India's Benedictine Bennison finished 5th in the heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Bennison, Anish Sunil, Akash Mani and were eliminated in the heats after finishing last in their team race. They recorded a time of 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
2: India faced a disappointing day in canoe sprint with all four entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. Men Kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Laiton Jim, Varinder Singh, Oina Singh and Harshvardhan Singh, with clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500 game, Sonia Devi and Parvati failed to make the after final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200 meter final after finishing 4th in the 5 boat semi final in 51.093 seconds. Megha finished 1.66 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest in the esports arena. Prerna Sharma.
0: Esports maidan par nahi कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के ई स्पोर्ट से अच्छी खबर है। भारत के डेब्यूटेंट परदीप ने ग्रुप डी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल पक्की कर ली है। अब पारितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने ई स्पोर्ट्स में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
0: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशु, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting in the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final, with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also be representing India in the shooting 10-meter air pistol and hoping to make it to the final. It's a crucial day for Kabaddi. It's time for men's and women's, and India faces Nepal in the women's Kabaddi and India then faced Thailand in the men's Kabaddi semi-final. 2 medals came for India in athletics today. Will the athletes tomorrow do well? Well, Manpreet Kaur and Krishna J. Menon are in action in the women's short put final. The women's pole vault final sees Sindhushri Ganeshan, Baranika Angaval in action. We had success in the women's 10,000 meter. Will Gulveer do well for India in the men's 10,000 meter final tomorrow? And then in the men's final. After gold medal events, India are also in action in hockey, where the women's team takes on Japan. Sachin and Preeti are in action in boxing, while Animesh and Gurvinder will try to make it to the finals in the 100-meter athletics. It will also be seen in action in fencing, badminton, canoe, swimming and esports. So here's hoping for

0: जैज इज अ फनी थिंग
1: आकाशवाणी
0: इट
1: का
0: कैन
1: शिविर विक्रम
0: विस्पर
1: केंद्र है।
0: स्विंग फ्लर्ट
1: इसमें रात्रि के
0: एक्सपेरिमेंट
1: दस
0: एंड
1: बजकर बीस
0: ऑकेजनली
1: मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीत।

अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म खेल खिलाड़ी का में महबूब के गीत को संगीत दिया था ए.आर. रहमान ने। लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और एम.एम. करीम को फिल्म पहली नज़र में। गीत रचना मदन पाल का तथा संगीत एम.एम. करीम का है।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों पर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलेगी, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में वर्षा होगी, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:30 और 22 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। सुबह के समय 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: हर व्यक्ति की अपनी एक अलग क्षमता और जीवन यात्रा होती है। दूसरों से अपनी तुलना करने पर हम अपनी खूबियों को भूलने लगते हैं। याद रखिए, फूलों की खुशबू इस बात से नहीं है वे एक दूसरे जैसे हों, बल्कि इस बात में है कि हर फूल अपनी अलग खुशबू रखता है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की नहीं, कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। आपकी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि आपके अपने बीते हुए कल से है। तुलना आत्मविश्वास को कम करती है, जबकि आत्मविश्वास हमें अपनी पहचान बनाने की शक्ति देता है।
0: अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।